हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने वाले हैं। और अब समाचार के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री

0: स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी आप दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 6:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले आइए करें वंदना इस पावन धरा की।

भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस मधुर भजन के बाद आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम को समर्पित ये भजन।

प्रभु श्री राम को समर्पित इस भजन के बाद कार्यक्रम के अंत में आइए सुने प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित ये भजन।

0: और मीरा के इस भजन के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर 6:30 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है खेती पर औजार की तैयारी। वाचन स्वर श्रीमती चित्रलेखा तिवारी का।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। खेती की बात करे पर मैं हूँ आपके साथ कजरी दीदी। आज हम खेती के बात में विषय लाए हैं खेती बर औजार के तैयारी। संगी हो, जून के महीना खरीफ फसल के बुआई और खेत के तैयारी पर बहुत महत्वपूर्ण होते। ये समय किसान मुख्य रूप से कृषि के यंत्र मन के सर्विसिंग करवाते और खेत ला गहरा जोताई करे बर और वर्षा के जल संचयन के तैयारी पर मुख्य कृषि औजार के उपयोग करते। तो आवा बताएं, जून महीना में आप खेती के औजार के संग का प्रमुख कार्य कर सका था और खेत तैयार करे बर अलग अलग

0: कृषि यंत्र के उपयोग करे जाते। ए यंत्र मन किसान के समय मेहनत और लागत ला कम करते। सबसे पहले खेत की जुताई करे जाते। जुताई करे बर हल कल्टीवेटर और रोटावेटर जैसे यंत्र के उपयोग होते। एखर ले माटी भुरभुरी हो जाते और खरपतवार नष्ट हो जाते। जो यहाँ बहुत जरूरी है दवाई ये समझा खेती के खरपतवार के नष्ट करना है। तो जुताई के बाद खेत के समतल करे बर पाटा के उपयोग करे जाते और समतल खेत में पानी के समान वितरण होते और फसल के बढ़वार भी बढ़िया होते। यदि खेत में फसल अवशेष या कचरा होए तो उकर सफाई बर रोटावेटर या दूसर उपयुक्त यंत्र के उपयोग करे जा सकते। एकर बर खेत बुआई बर तैयार हो जाते। और कृषि यंत्र चलाए के पहली कुछ बात मन के ध्यान रखना बहुत जरूरी है। का बातें? पहला तो होते यंत्र के जम्मो पुर्जा के पहली जांच कर लेवा भाई। कैसे है पुर्जा? ठीक से लगे है कि नहीं? साफ सुथरा है कि नहीं? बढ़िया मशीन? अब सब मशीन तो आए संगी हुआ तो चला थे कि नहीं? इहू ला बढ़िया देखना है भाई। हमन बढ़िया खाथन पीथन त स्वस्थ रहथन और दौड़थन न, वैसन ही कृषि यंत्र ल भी व्यवस्थित करवो। ग्रीसिंग आइलिंग करे रे वो ता तो हद दौड़ी। दूसर होते इंजन में पर्याप्त डीजल तेल और ग्रीस हो है। और नट बोल्ट ढीरा मत रहे, देख के कसना है बीच बीच में है ना। और तेल वेल डाले रही तो क्या होते जल्दी जल्दी ढीला हो जाती। तो एक बार या दो बार चलाए के बाद एक बार आप आओ ओला जांच कराओ कि नट ठीक से कसा है कि नहीं कसा है। दुर्घटना से देर भली कथे। और टायर के हवा सही मात्रा में हुआ है इहूला देखना है। और चालक जौन भी कृषि यंत्र चला थे वह जतका सुरक्षा नियम है हम बतात रथन कि कपड़ा इसे पहना, मुड़ मदे चीज लगा के रखा है ना, चलाए के समय ध्यान रखा, ये सब जतका सुरक्षा नियम है सब के पालन करवावा। और यंत्र के नियमित रख रखाव ले ओकर कार्य क्षमता भी बढ़ते और खराब भी कम होते। काम खत्म होए के बाद यंत्र ला साफ सुथरा करके सुरक्षित जगह में रखे जाना चाहिए। तो संगी हुआ खेत के सही तैयारी और कृषि यंत्र के उचित उपयोग ले खेती अधिक लाभकारी बनते। आधुनिक कृषि यंत्र किसान मन के मेहनत कम करके उत्पादन बढ़ाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो का करे बर हमें जरूरी रहते देखा फिर से एक बार बता दी। गहरा जोताई बर ट्रैक्टर वगैरह जो मिट्टी पलटैया है ना वो सबके ध्यान रखा। और दूसर होते दूसरा जोताई बर कल्टीवेटर डिस्क हैरो और रोटावेटर ये सब के मदद लिए जाते। तो एकर भी आप देख लेवा कि आपके कृषि औजार ठीक है कि नहीं, नट बोल्ट ठीक है कि नहीं। तीसरा होते खेत के समतलीकरण करे बर जो लेजर लेवलर या पाटा ओकर उपयोग करथन ओहूला आप मन देख करके व्यवस्थित करके फिर आप खेत में ओला उतारा। और खातू और उर्वरक मिलाए बर जोताई के समय जो गोबर खाद कंपोस्ट खाद या रासायनिक उर्वरक ला माटी में अच्छा तरह मिलाए बर भी कृषि यंत्र जरूरी रहते। तो उहू ला आप मन निकाला था तो देख ताक के अब बढ़िया नट बोल्ट ला चेत करके देख करके फिर आप ओला कृषि यंत्र के उपयोग करो। तो कृषि यंत्र के का लाभ है जाना तो हवा। समय और श्रम के बचत होते, खेती के लागत में कमी होते और अधिक क्षेत्र में कम समय में काम होते और उत्पादन और आय में वृद्धि होते। काबर के और खेती के काम में सटीकता आते स्मार्टनेस आते। तो स्मार्ट खेती करा और बढ़िया उपज आप मन लेवा। अंत में हम यही कहबो कि आधुनिक कृषि यंत्र खेती के विकास के आधार बन गए हवा। खेत के सही तैयारी कृषि यंत्र के उचित रख रखाव ले किसान के कम मेहनत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते। तो अधिक लाभ कमावा और हमारे शुभकामना भर भर पावा। यही गोट बात के संग आज के खेती के बात ले देव विदा। कल फिर नया विषय के संग आपके संग उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम जय जोहार।
1: खेती के बाद अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।
2: एपिसोड नंबर 112।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: जीवन में कई बातों का बड़ा महत्व होता है।

0: व्यक्तित्व सद्गुणों से ही बनता है। स्वच्छता भी एक ऐसा ही गुण है जो जीवन में बहुत आवश्यक है। हम जहां रहते हैं वहां की स्वच्छता आवश्यक है। कहा भी जाता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है। स्वस्थ मस्तिष्क का विकास भी स्वस्थ शरीर में ही होता है। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति हमसे पहली बार मिलता है तो वो हमारा मूल्यांकन हमारी स्वच्छता के आधार पर ही करता है। मसलन, हमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, हमारा निवास स्थान कितना स्वच्छ है, आदि आदि। किंतु जब वो हमसे परिचित हो जाता है तब वो हमारा मूल्यांकन हमारी मानसिक स्वच्छता अर्थात हमारे निर्मल मन और हमारे सद्गुणों के आधार पर करता है। इस तरह हमें अपने वातावरण की स्वच्छता के साथ ही अपने मन की स्वच्छता पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। छल कपट युक्त व्यक्तित्व कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकता है। मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग हमेशा मुंह में गुटखा पान या तंबाकू भरे रहते हैं। वे मुंह में इतने भर लिए रहते हैं कि या तो उन्हें कुछ बोलते नहीं बनता या बोलता भी है तो जो कहना चाहता है वो स्पष्ट नहीं होता है। कुछ लोग इन परिस्थितियों में जब बोलते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर थूक छिटकते रहते हैं। ये बहुत ही बेहुदा लगता है। ऐसे लोग जब कभी जहां कहीं भी थूक देते हैं, ऐसे लोगों को थूकते देख उनके प्रति बड़ी घृणा उत्पन्न होती है। वे थूकते समय ये भी नहीं देखते कि ये दरवाजा है कि साफ सुथरी दीवार है। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। नए भवन जो रंग बिरंगे सुसज्जित होते हैं इन लोगों की हरकतों से पल भर में बदरंग हो जाते हैं। जरा सोचिए, यहां वहां थूकने वाले इन लोगों के व्यक्तित्व के संबंध में आप क्या कल्पना करेंगे। गुटखा खाइए, पान खाइए, हम कौन होते हैं रोकने वाले, पर अपने स्वास्थ्य का भी तो ख्याल कीजिए। शासन इतने खर्च करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है पर इनके कानों में तो जू तक नहीं रेंगती। देश में लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं जबकि लाखों लोग कैंसर से प्राण भी त्याग देते हैं। पान गुटखा तंबाकू ही कैंसर के प्रमुख जन्मदाता हैं। थूकने की एक निश्चित जगह होती है, स्थान स्थान पर पीक दान होते हैं। अपनी थोड़ी सी सभ्यता का परिचय देते हुए वे वहां थूक सकते हैं, पर इन्होंने तो मानो असभ्यता करने का प्रण ही ठान लिया है। ऑफिस, सार्वजनिक स्थल आदि में जगह जगह लाल पीले ऐसे चिन्ह देखे जा सकते हैं जिसे देखकर मन में एक सिहरन सी उत्पन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि यदि हम अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने में मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वातावरण को दूषित तो न करें। सार्वजनिक संस्थान, कार्यालय, सड़कें, विद्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों को स्वच्छ बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है और हमें अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 हुए हैं और अब कार्यक्रम विवरण में आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से रिले प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। सुबह 8:30 पर रायपुर केंद्र से ही आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। सदाबहार नगमे का समय होगा सुबह 7:30 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। सुबह 10:30 पर हम हाजिर होंगे नए तराने लेकर और 11 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCRT। 11:30 से हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। रायपुर केंद्र से 11:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और दोपहर 12 बजे हम दोबारा जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

शाम 5:05 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा प्राकृतिक एवं जैविक खेती का महत्व। भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित किसान वाणी गाँव में सरायपाली में जन स्वास्थ्य केंद्र गन्यारी के सहयोग से महिला स्व सहायता समूह द्वारा दाल प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट, संपादन चित्रलेखा तिवारी का, प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। इसके साथ ही क्रम होगा मौसम मंडी और सामायिक सुझाव। शाम 5:35 पर आप सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होगी सामायिक चर्चा खेल कूद से सशक्तिकरण। क्रम होगा भेंटवार्ता महिला पुलिस साहस और सुरक्षा विषय पर, श्रीमती मंजू किरकिट्टा उप पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से भेंटवार्ता। शाम 6:20 और शाम 7:00 आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे दिल्ली

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से ले केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला विषय आतंकवाद। चित्रपट संगीत का समय होगा शाम 7:45 पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम भुइयां की बोली, वार्ता प्रकृति और पर्यावरण ले जुड़े हमार लोक संस्कृति श्री केदार दुबे, काव्य पाठ श्री आशीष श्रीवास का, संपादन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया। रात 8:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा समाचार। संध्या का समय होगा दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। तो हम आपको एक बार फिर बता दें, आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला विषय आतंकवाद। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 MHz पर 6:55 होने वाले हैं और समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा

0: जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दामुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: श्रोताओं, सबसे पहले आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, अब आप सुनेंगे प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर, अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। मैं हूं उमा शंकर पांडे, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विकासशील बिलासपुर में बढ़ती सड़क व्यवस्था, साफ सुथरे लंबे चौड़े चौक चौराहों, तमाम ओवरब्रिज आदि की उपलब्धता के साथ ही आप सभी बिलासपुर वासियों की यातायात के प्रति सजगता एवं यातायात के जवानों के प्रयास से लगातार शहर के साथ साथ संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। इसी प्रकार सुगम यातायात व्यवस्था हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है हमेशा

0: जिले की आज की यातायात व्यवस्था। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विकासशील बिलासपुर में बढ़ती सड़क व्यवस्था, साफ सुथरे लंबे चौड़े चौक चौराहों, तमाम ओवरब्रिज आदि की उपलब्धता के साथ ही आप सभी बिलासपुर वासियों की यातायात के प्रति सजगता एवं यातायात के जवानों के प्रयास से लगातार शहर के साथ साथ संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। इसी प्रकार सुगम यातायात व्यवस्था हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है हमेशा यातायात के नियमों के प्रति 100% वफादार रहें। मित्रों, आज से नवीन स्कूली शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हो रहा है, शुभकामनाएं। सुबह से ही स्कूली वाहन एवं बच्चे आते जाते दिखाई दे रहे हैं। स्कूली सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व ही लगभग सभी माता पिता अपने बच्चों के घर से स्कूल एवं स्कूल से घर आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था कर लिए होंगे। यदि आप संबंधित स्कूल के द्वारा चलाए जा रहे वाहन से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तब तो सब ठीक है, क्योंकि स्कूल के माध्यम से चलने वाले वाहनों की सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही यातायात एवं परिवहन विभाग की टीम के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी 16 बिंदु के गाइडलाइन के अनुसार जांच की जाती है और सभी परीक्षणों में खरा उतरने वाले वाहनों को ही बच्चों के परिवहन की अनुमति दी जाती है। यदि आप अपने स्तर पर कोई ऑटो वैन आदि वाहन अपने बच्चे के लिए तय करते हैं तब आपको हमेशा सजग होना होगा और इन बातों का अक्षरशः पालन भी करना होगा, क्योंकि सवाल आपके अरमान अर्थात आपके अबोध बच्चे का है। सबसे पहले देखिए आपके द्वारा निश्चित किया गया वाहन जर्जर तो नहीं है, सीट दरवाजा आईना खिड़की आदि सही है अथवा नहीं, वाहन के सभी प्रपत्र पूर्ण है या नहीं, चालक के पास क्या वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, वाहन चालक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, चालक का बच्चों के प्रति व्यवहार रूखा या कड़ा तो नहीं है, चालक किसी प्रकार से नशे का आदि तो नहीं है। साथ ही यह भी ध्यान दें, वाहन चालक बच्चों को वाहन में बैठा कर ले जा रहा है ना कि भर कर। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं, और अब चर्चा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। भीषण गर्मी के बाद अब मानसून के आगमन का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। मानसून बस आने को है। श्रोताओं, भीषण गर्मी में अपने आसपास हम सभी ने जल संकट देखा है, हम में से बहुतों ने इसे झेला भी होगा। श्रोताओं, भू जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण अक्सर गर्मियों में यह समस्या हमारे सामने आती है, लेकिन जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों को अपनाकर हम भू जल स्तर को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह व्यवस्था हमें भविष्य में जल संकट से बचा सकती है। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसून हमारे जीवन में नई ऊर्जा, हरियाली और खुशहाली लेकर आता है। खेतों में फसलें लहलहाती हैं, तालाब और नदियां भर जाते हैं और वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है। लेकिन इसी मानसून के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, और वह है वर्षा जल का सही प्रबंधन और संरक्षण। आज कई क्षेत्रों में यह देखने मिल रहा है कि बारिश का पानी बड़ी मात्रा में व्यर्थ बहकर नालों, नदियों और खाली जमीन में चला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि भू जल स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता। दूसरी ओर गर्मी के मौसम में वही पानी की कमी गंभीर जल संकट का रूप ले लेती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक पेयजल की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार ये सुझाव देते हैं कि हमें जल संरक्षण को अब केवल एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता के रूप में अपनाने की जरूरत है। यदि हम आज जल बचाएंगे तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जल संरक्षण

के कुछ प्रभावी उपायों की, जिन्हें अपनाकर हम इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है घरेलू स्तर पर जल बचत। हमें अनावश्यक पानी के उपयोग को रोकना चाहिए, जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखना, स्नान में पानी का सीमित उपयोग करना और टपकते हुए नलों को तुरंत ठीक करवाना। इसके अलावा घरों में उपयोग किए गए पानी का दोबारा उपयोग भी किया जा सकता है, जैसे पौधों की सिंचाई में या सफाई के कार्य में। इसके साथ ही वृक्षारोपण भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ पौधे वर्षा जल को जमीन में रिसने में मदद करते हैं और मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं। इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। श्रोताओं, और एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो जल संरक्षण की, जिसके विषय पर हम आपसे चर्चा कर लें। इस तकनीक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। यह एक ऐसी वैज्ञानिक और व्यवहारिक तकनीक है जिसमें वर्षा के पानी को छतों, नालियों और अन्य सतहों से एकत्र किया जाता है। इस पानी को फिल्टर करके टैंकों में संग्रहित किया जा सकता है या सीधे जमीन में भेजा जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे भू जल स्तर में सुधार होता है। जब वर्षा जल जमीन में रिसता है तो वह भूमिगत जल स्रोतों को दोबारा भरता है, जिससे कुएं, हैंडपंप और बोरवेल अधिक समय तक सक्रिय रहते हैं। यह तकनीक शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां कंक्रीट की अधिकता के कारण पानी जमीन में नहीं जा पाता। इसके अलावा एक प्रभावी तकनीक है इंजेक्शन वेल सिस्टम की। इंजेक्शन वेल एक विशेष प्रकार का संरचनात्मक कुआं होता है, जिसके माध्यम से वर्षा जल या सतही जल को सीधे जमीन की गहराई में स्थित जलभूत तक पहुंचाया जाता है। इससे भू जल तेजी से रिचार्ज होता है और पानी की उपलब्धता बढ़ती है। यह तकनीक खासकर उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां जल स्तर बहुत नीचे चला गया है या जहां वर्षा का पानी तेजी से बहकर निकल जाता है। इंजेक्शन वेल न केवल जल संरक्षण में मदद करता है, बल्कि सूखे जैसी परिस्थितियों से निपटने में भी सहायक होता है। श्रोताओं, जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा इंजेक्शन वेल की तकनीक का इस्तेमाल करके वर्षा जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है और 100 से अधिक इंजेक्शन वेल तकनीक का इस्तेमाल करके भू जल स्तर को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोताओं, यदि हम इन सभी उपायों को सामूहिक रूप से अपनाएं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंजेक्शन वेल, वृक्षारोपण और घरेलू जल बचत, तो निश्चित रूप से जल संकट की समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हर व्यक्ति जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझे और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। शासन प्रशासन के साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। श्रोताओं, तकनीक के विषय में, वर्षा जल संरक्षण की तकनीकों के विषय में हम विस्तार से और चर्चा कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं एक मधुर गीत।

धैया नायक भारत योगिर नकपद बंस बजावत धेनु चलैया जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: Good morning. Good morning.
1: Good morning.
2: बेटा।
0: Yes, papa.
3: बरखोरदा।
0: Yes, daddy.
2: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ, I'm sorry.
4: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
5: नमस्ते।
4: जय हिंद ओ पिताजी।
5: जय हिंद।
4: नमस्ते नमस्ते है सबको।
1: नमस्ते बाबू चाचा।
4: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: अच्छे
1: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है।
0: वाह वाह बेटा,
1: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे थे जल संरक्षण के उपायों की, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के बारे में हम आपको विस्तार से बता दें। यह एक वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जिसके जरिए वर्षा के जल को एकत्रित, संरक्षित और पुनर्भारित किया जाता है ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में वर्षा जल संरक्षण का यह एक प्रभावी और टिकाऊ समाधान बनकर उभरा है। इस तकनीक के तहत भवनों की छत, आंगनों, सड़क, खेत और अन्य जल संग्रहण क्षेत्रों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों और नालियों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। इसके बाद जल को फिल्टर कर भंडारण टैंकों, तालाबों और जलाशयों में सुरक्षित रखा जाता है या रिचार्ज पिट, रिचार्ज कुआं और बोरवेल के माध्यम से जमीन के भीतर पहुँचाया जाता है, जिससे भू जल स्तर में वृद्धि होती है। वर्षा जल संचरण प्रणाली के प्रमुख घटकों में जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया, संग्रहण पाइप, फिल्टर यूनिट, भंडारण तथा रिचार्ज संरचनाएं शामिल होती है। यह प्रणाली वर्षा के दौरान बहकर नष्ट होने वाले पानी को उपयोगी बनाती है और जल के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग सिंचाई, पशुपालन और घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह पेयजल की पूर्ति, उद्यानों की सिंचाई और भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इस तकनीक के अनेक लाभ हैं। इससे भूजल स्तर में सुधार होता है, जल की उपलब्धता बढ़ती है, सूखे और जल संकट की स्थिति में राहत होती है। इसके साथ ही नदियों, तालाबों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भरता भी कम होती है। यह वर्षा के पानी के अनावश्यक बहाव को रोककर मिट्टी के कटाव और शहरी जल भराव की समस्या को भी कम करता है। जल संचयन के इस माध्यम से जल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, क्योंकि भूजल का प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण होता रहता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां कई क्षेत्रों में समय समय पर जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां वर्षा जल संचयन का विशेष महत्व है। सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं और अभियानों के जरिए इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि प्रत्येक घर, विद्यालय, कार्यालयों और सार्वजनिक भवन में वर्षा जल संचयन प्रणाली की इस तकनीक को अपनाया जाए तो लाखों लीटर जल का संरक्षण किया जा सकता है। इस तरह वाटर हार्वेस्टिंग न केवल जल संरक्षण का एक प्रभावी उपाय है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी। श्रोताओं, एक और तकनीक पर हम चर्चा करते हैं, वो है इंजेक्शन वेल तकनीक। यह तकनीक भू जल पुनर्भरण की एक उन्नत जल संरक्षण तकनीक है, जिसके जरिए वर्षा जल या उपचारित ट्रीटेड जल को सीधे भूमि के भीतर पहुंचाया जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य भूजल स्तर को बढ़ाना, जल संकट को कम करना और भूजल स्रोतों उन क्षेत्रों में जहां भूजल की कमी है उसको पुनर्भरण करना है। सतही जल का पर्याप्त जल संचयन जहां संभव ना हो, वहां इस तकनीक का इस्तेमाल बेहद प्रभावी सिद्ध होता है। इस तकनीक में वर्षा जल को पहले एकत्रित किया जाता है और फिर उसे विभिन्न स्तरों के फिल्टरों से गुजारा जाता है ताकि मिट्टी, रेत, पत्तियां और अन्य अशुद्धियां हटाई जा सके। इसके बाद साफ पानी को पाइपलाइन के माध्यम से इंजेक्शन वेल में डाला जाता है। यह वेल सामान्यतः 30 से 100 मीटर या उससे अधिक गहराई तक बनाया जाता है, जो सीधे जलभृत तक पहुँचता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी भूमि की ऊपरी सतहों में रुके बिना सीधे भूजल भंडार में पहुंच जाता है और भूजल स्तर में वृद्धि होती है। यह तकनीक इस तकनीक के बहुत से लाभ है, जिसमें वर्षा जल का अधिकतम उपयोग संभव होता है, भूजल स्तर तेजी से बढ़ता है, सूखते हुए कुओं और बोरवेल पुनर्जीवित हो सकते हैं। यह जल उपलब्धता में सुधार करने में बेहद सहायक होता है। शहरी क्षेत्रों में जहां भूमि की सतह कंक्रीट और डामर से ढकी हो, वहां प्राकृतिक रूप से पानी का जमीन में रिसाव कम होता है, वहां यह तकनीक विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। इसके साथ ही श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बेहद

सरल तकनीक होती है वह है सोखता गड्ढे का निर्माण करना। इस तकनीक के जरिए भी आंशिक रूप से ही सही लेकिन वर्षा जल के संचयन में भूजल स्तर की वृद्धि में ये सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि गांव में हर व्यक्ति सरल तरीके से सोखता गड्ढों का निर्माण करे तो भूजल जल को बढ़ाने में यह तकनीक भी मददगार होती है।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे के इस क्रम में आज हम याद कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत के उस महान गायक और संगीतकार को जिनकी आवाज़ को अक्सर मखमली बारीटोन कहा जाता है। उनका जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी में हुआ। वे हिंदी और बांग्ला संगीत जगत के उन बिरले कलाकारों में से थे जिन्होंने गायकी, संगीत निर्देशन और फिल्म निर्माण तीनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी।

श्रोताओं पहचाना आपने, आज हम बात कर रहे हैं महान गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार की, जिन्हें संगीत प्रेमी आज भी मखमली आवाज़ के जादूगर के रूप में याद करते हैं। 16 जून 1920 को वाराणसी में जन्मे हेमंत कुमार का वास्तविक नाम हेमंत मुखोपाध्याय था। उनका बचपन कोलकाता में बीता, जहाँ साहित्य और संगीत के वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने के बावजूद उनका मन संगीत में रमा और उन्होंने अपना जीवन सुरों को समर्पित कर दिया। हेमंत कुमार ने बहुत कम उम्र में आकाशवाणी के लिए गाना शुरू किया। 1940 के दशक में उन्होंने बांग्ला फिल्मों और गीतों के माध्यम से पहचान बनानी शुरू की। धीरे धीरे उनकी मधुर और गंभीर आवाज़ ने श्रोताओं के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि वे हिंदी और बांग्ला दोनों संगीत जगत के सबसे सम्मानित कलाकारों में गिने जाने लगे।

0: हिंदी फिल्मों में हेमंत कुमार की पहचान केवल एक गायक के रूप में नहीं बनी बल्कि एक सफल संगीतकार के रूप में भी स्थापित हुई। 1954 में आई फिल्म नागिन का संगीत उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें देश के अग्रणी संगीतकारों की श्रेणी में ला खड़ा किया।
1: जाजू वाला हक माला हो या जाजू वाला हक माला हो।

हेमंत कुमार केवल हिंदी तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने बांग्ला संगीत, विशेष रूप से रविंद्र संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई और लोक संगीत की सहजता का अद्भुत

0: है तो टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पापा के गुजर जाने के बाद एकदम अकेला पड़ गया था। कभी कर्ज की चिंता, कभी ब्याज का बोझ, फिर पता चला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में, तब लगा कोई अपना भी साथ खड़ा है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,00,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा, 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड और MSP पर 26,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद से देश के किसानों को मिली मजबूती।
3: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जन प्रसार हेतु जारी।

0: में डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, हेमंत कुमार की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संगीत जगत में उनके योगदान के कारण उन्हें वॉइस ऑफ गॉड यानी ईश्वर की आवाज तक कहा गया।

26 सितंबर 1989 को हेमंत कुमार इस दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी जीवित है। उनकी गायकी समय की सीमाओं से परे है।

0: हेमंत कुमार केवल एक गायक नहीं थे बल्कि भारतीय संगीत की आत्मा के स्वर थे। उनकी आवाज में प्रेम था, पीड़ा थी, दर्शन था और जीवन की सादगी भी। संगीत के इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा
1: था।
0: और इसी के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 8 बजने वाले हैं और समाचारों के लिए अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की

0: सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजिशन

0: पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ।
1: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
0: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाए और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की

0: संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान, मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at U.S. Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation

0: कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार। संगवारी हो, मोर भुइया के ये अंक मा बेरा बेरा में हमन अपन अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार मन से आपके मुलाकात करवाथन। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार, ये क्रम मा आज हमर पहुना है वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप। आप मन ले गोठ बात करत हैं समीर शुक्ल।
1: लोक परंपरा, संस्कृति और साहित्य ये आपस में एक दूसरा से ऐसे मिलते हैं कि जिला अलग अलग देखे के मन नहीं हुआ है। या ये कहे जाए कि माटी में बगरे एक एक कण आपस में मिलके जिन चीज ल बनाते वो हमार परंपरा होते, और परंपरा जब जुन्ना बखत ले चलत आते तो संस्कृति बन के और हमार आघू में आते, और संस्कृति ला जब कलम के ताकत मिलते और वो कागज में उतरते तो वो साहित्य के निर्माण होते। हमर छत्तीसगढ़ के भुइया में बहुत तक ऐसे साहित्यकार बेटा मन होइन जिन मन यहाँ के भुइया के प्रताप लगाइन लिखिन और जम्मो संगवारी मन तक अपन अपन हिसाब ले पहुँचाए के उद्यम ल करिन। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार मोर भुइया के एक ऐसे मंच जहाँ ऐसने छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन ला, या ये कह जाए कि छत्तीसगढ़ महतारी के साहित्यकार सपूत।

0: मन ला हम यहाँ पहुनई करे बर बलाथन आमंत्रित करथन और बड़ भाग है हमर कि आज ये मंच में हमर पहुना बन के आए हैं अंचल के वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप जीवन। आप मन नवदीप जिला एक कवि के रूप में जानता हो, एक साहित्यकार के रूप में जानता हो, तो आज हम उनखर मल्ले गोट बात करबो। सुरजीत जी, आप मन के गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है कार्यक्रम।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सुरजीत जी, वैसे तो आप मन ला हमार संगवारी मन कवि के रूप में जानते हैं, आप मन के कविता सुनत आए हैं। सबले पहले हम आप मन ले जानना चाहबो कि आखिर ये लोक साहित्य का होते।
1: मैं पहले पहले तो आप लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में मुला आज आमंत्रित करे हो आप। जेकर विचार और भाव हमार पूरा छत्तीसगढ़ वाला बन सुनी और जानी। आज हम याद करते हैं पिछला समय जब हमारे बड़े बड़े साहित्यकार मन रही ने, खास करके वो मन साहित्यकार मन याद करना चाहता हूँ, श्री द्वारका प्रसाद विप्र, कबीरनाथ जी कश्यप, सुंदरनाथ जी शर्मा। आज़ादी के आंदोलन के पहले जब ये कविता लिखी देश के आज़ादी पर, तब ओकर और फिर सन 70 के आसपास सातवां दशक में आता कैसे परिवर्तन आगे लोक भाषा में रचना करे में जो आनंद एक रचनाकार मिलते वो दूसरा में आनंद नहीं मिल सके। काबर की माँ के कोख से जन्म ले के बाद जब हम अपन महतारी के मुंह से हम ओकर बोली ला ओकर भाषा ला सुनथन तो ऐसे लगते जैसे अमृत बरसत। और वो भाषा ला सुन के धीरे धीरे करत करत वो अगर मुख ला देख देख के छोट कुल लड़का हा अनुभव करते कि कुछ कुछ गोठियाते दाई या गोठियाते और वो सुनत सुनत धीरे धीरे बड़े हो जाते।
0: संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन सियान हुआ थे जुन्ना बखत ले छत्तीसगढ़ी लेखन मा यहाँ के सेवा करा थे, लेकिन नान्हे लड़का के बात सुरजीत जी आप मन कर दो तो ये मन मा जाने की इच्छा हुआ थे कि आप मन के जन्म कहाँ हुए रहिस और आगू के जीवन
1: ये,
0: कैसे
1: ये बात बढ़िया पूछे हो आप मन। मोर जन्म पंजाब के पंजाब पाकिस्तान में हवे। अभी वहाँ एक जगह हवे मंडी भावदी, लाहौर से छठवा स्टेशन पर थे, वहाँ मोर जन्म हुईस। और जब ये देश के बंटवारा हुईस तब मोर उम्र 8-9 साल की रहीस। तब हम जब वहाँ से चले रवाना हुए, मोला अच्छे तरह याद है कि हमारा 6 महीना हो रही से नवा घर बना रहे, हमला वो घर छोड़ के भाग के आना पड़ी।
0: सुरजीत जी, हिंदुस्तान बहुत विशाल देश रहीस, ओखर हृदय स्थल में स्थित हमर छत्तीसगढ़। पंजाब ले चल के वो नान्हे लड़का 1948 के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचिस?
1: हम जब ये बंटवारा हुई हम वहां से रवाना हो गए, अमृतसर होत, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, मेरठ होत हुए हमन जबलपुर आ गए। जबलपुर से घूमत घामत हमन इंदौर चले गए, इंदौर से फिर चले आए हमन रायपुर। अचानक कांवर की हमार पिताजी बताइस कि हमार जो बाबा है वो है कंडेल में रहते। हमार बड़े पिताजी और मोर पिताजी ये तय करें कि हम नीचे चलबो और हम सवेरे 4 बजे करीब करीब हम सरसोपुरी रेलवे स्टेशन में उतरे और वहाँ पता लगाए तो बताइए 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से कंडेल हावी बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के गाँव जो आजादी के लड़ाई लड़ी वो गाँव। तब हमला लोग मन बताई मोर पिताजी है एक तरफ मोर छोटे भाई ने बैठाई और एक तरफ थोड़ बहुत जो सामान है से तेरा रख के हम मन ओकर पीछू पीछू कंडेल पहुंच गए। वहाँ एक साहू परिवार हम मल्ला सहारा दीस। एक बात जरूर मोला आज याद आते कि साहू परिवार है तन मन और धन से हमार परिवार के सेवा करी, अलग से किराया में घर ले दिन जहाँ हमार पिताजी बड़े पिताजी व्यापार करना शुरू करी। एक बात के जरूर प्रश्न हो सकते कि मैं यहाँ वहां आ तो गया हूँ, हमारे परिवार घर आ गए, हम मन बिल्कुल छत्तीसगढ़ी नहीं जानत रहे। सवाल रही छत्तीसगढ़ी नहीं जानबो हमारे काम धंधा व्यापार कैसे चली। तब धीरे धीरे करके वो साहू परिवार के बच्चा मन से बड़े मन से हमारे माता पिता मन बातचीत करे धीरे धीरे। तो हमारे बाबा मल्ला बताइस ये मल्ला तुम छत्तीसगढ़ी बोले भर धीरे धीरे सिखाओ। हमारे माँ छत्तीसगढ़ी बोले बोल पूरा नहीं बोल सके अधूरा बोले। हम मैं बाजू बैठ के सुनो पिताजी लभी ऊ लाई। तब ओ मन जब भी रहा तब महू अपन धीरे धीरे कोई सामान भी खरीदे बर आए तो महू छत्तीसगढ़ी बोलो उगम से सुनो और वही मेरे

0: गांव हवे झरिया, मोर माँ बाप मन और साहू जी मन तय करी कि ये बच्चा ला स्कूल भेज दे जाए, हम झरिया चल दे पढ़े बर जान, 1.5 किलोमीटर दूर गांव में। और वहां जब रास्ता में मैं जाऊं और जब स्कूल पहुंच जाऊं, तब बच्चा मन सब मन छत्तीसगढ़ी में गोठिया, तो मऊ कर मसा धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी गोठियाना सीख गया।
1: सुरजीत जी, विभाजन के त्रासदी झेले वो नान्हे लड़का, घूमत फिरत यहाँ ले होत वहाँ जात, धीरे से पहुंचिस छत्तीसगढ़ के कंडेल में, कंडेल में पढ़े ला स्कूल पहुंचिस। ये पूरा ओखर अनुभव वो नान्हे लड़का के मन में समोत जात है, और जब वो लड़का बड़े होइस तो ये सब अनुभव मन ओला कौन से और रद्दा दिखाई।
0: जब वो गांव में चल दियो तो मोर माता पिता मन पंजाब में जब रही ने, उमन पाठ करे सबरे साहब गुरुद्वारा में जाए, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ करे, मैं भी सुनो कर मसा जाओ। जब उमन यहाँ छत्तीसगढ़ आ गए और कंडेल आ गए, तो मोला एक ऐसे मौका सुअवसर मिले कि हम श्रीवास्तव जी कंडेल के रविया जो देश के आजादी के लड़ाई में भाग ली, और हमारे बड़े नेता हो गए, और ऐसे बड़े नेता कि ओकर प्रयास के बाद धमतरी में गांव में 2 बार हमार महात्मा गांधी जी आई, ओकर पूछे कि आखिर ये आंदोलन चलिस कैसे, कैसे करते हो आप, कैसे आदमी मन जुड़ते, तो सब कारण लो बताए, जोड़े के तरीका ला बताई, और आजादी की लड़ाई ला आखिरी तक लड़क रही से, ऐसे रही से हमार श्रीवास्तव जी।
1: हमार देश आजाद हो गए ओखर बाद सुरजीत जी, और आप मन नान्हे लड़का पढ़त पढ़त पढ़त अब और आगू बढ़िस जब, तो ये पूरा ओखर अनुभव जन नान्हेपन ले अब तक के रही से, अब ओला कहीं ना कहीं तो उतारना रहीस
0: जी,
1: और सबले अच्छे माध्यम रहीस साहित्य
0: जी,
1: तो ओ में आप मन के पदार्पण होइस। लेकिन विशेष तौर पे मैं आप मन ले जानना चाहत हूँ कि छत्तीसगढ़ी लेखन कैसे प्रेरित होया आप मन।
0: मैं जब कंडेल से मोर घर वाला मन धमतरी भेज दी, काबर की वहाँ हाई स्कूल नहीं रही से, झरिया में 4थी तक रही से और धमतरी में हाई स्कूल रही से, तो बोले पढ़े पर धमतरी भेजी, और धमतरी जब भेजी तो मैं यहाँ पढ़ना शुरू करे, छत्तीसगढ़ी में थोड़ थोड़ सीख गए हो, बोलो स्कूल भी जाओ, स्कूल में बोलो बातचीत करो, और प्राय लगभग लगभग सब विद्यार्थी मन छत्तीसगढ़ी बोले, पढ़ने वाला जतका धीनते मन में एक आनंद के बात रही से कि हमारे साथ जतका पढ़िया मन रही ने वो मन बोले मोर साथ मजाक करे, काबर कि मैं जब बोलो छत्तीसगढ़ी तो पंजाबी के लहजा ओमे आ जाए, तो मन कहा वो पंजाबी टूरल छेड़ो बोला सुनो, तो मोर कर कई जन भीड़ लगा के आ जाए और बोला चिढ़ाए कैसे का करत हन, तो मैं अब पंजाबी भाषा में लहजा में बोलो जैसे मैं बोल सकते हो, हाँ खा बात हो ना तुम का कहना है, तो मन हासे वो धीरे धीरे फिर सुधरत गिस, और मन मन में फिर भाव आए कई बार कि मैं हाँ कई बार हमारे वो गांव में छत्तीसगढ़ बनाए पर कई कार्यक्रम हो नाचा गम्मत हो, में नाचा गम्मत में भी जब वो मन बातचीत करे छत्तीसगढ़ राज्य के बातचीत करे और बाहर के आना वाला नेता मन आए वो मन छत्तीसगढ़ की मांग करे, मतलब याद आते छत्तीसगढ़ी के मांग कर प्यारे लाल ठाकुर साहब हमारे धमतरी में एक कार्यक्रम करी से जिला में गांधी चौक में बैठ के सामने बैठकर बच्चा रहो तो सुनो मन में भाव आई कि ये ला कविता में लिखे जा सकते, ऐसे लिखे जा सकते।
1: ओ बखत जुन्ना जमाना में कुछ कविता जिन आप मन लिखे हो कुछ ऐसे सुरता आते कुछ एकात लाइन का लिखे रहे हो कुछ?
0: यानी बोला सुरता आते कई ठन छोट छोट कविता लिखो, काबर के जो जब स्कूल हम जान तो बीच में तरिया पड़े और तरिया के थोड़ा से आगे में थाना और थाना के बाजू में वो गांधी चौक और वहां कार्यक्रम, तो मोर दिमाग में वही घूमे ये कैसे लिखे जा सकते, तब मैं लिखे रहा एक ठन हवे थाना एक ठन गांधी चौक और गांधी जी के नारा मिलत हवे हमला, तहू तो छत्तीसगढ़ जय बोल जय छत्तीसगढ़ जय बोल जय छत्तीसगढ़ जय बोल,
1: कहा बात है कहा।
0: ऐसे जब मैं लिख दियो एक ठन कार्यक्रम में हमार स्वर्गीय पवन दीवान जी आ रही से वो भाषण वासन दी भाषण छत्तीसगढ़ में ऊपर जब वो गीत सुनाई छत्तीसगढ़ बन जा ते लगाना, ऐसे जब मैं सुनियो तो मैं क्यों ऐसा तो मऊ लिख सकता हूँ थोड़ बहुत, मैं हिंदी में भी लिखियो छत्तीसगढ़ी में लिखियो, एक दिन ऐसे भी मौका आई कि जब मैं यहाँ राज्य में गया एक गाँव एक कार्यक्रम में अपन घर के कार्यक्रम में हमारे रिश्तेदार वहां पहुंच गया है, तो वहां जब वो कार्यक्रम खत्म हो गए तब मैं यहाँ पंडित जी का प्रणाम करके मैं क्यों मऊ छत्तीसगढ़ी में कुछ सुना सकतो का बोल सक, ते पंजाबी लेकर का सुना मेरे ते का बोल बे ते तो वो हसीस ठाकर लगा तो मैं कुछ जानत नहीं रहो, सब छत्तीसगढ़।

0: विमान थे, मैं नहीं जा रहा थे हूँ, तो मेरा लौट आती पर मोर मन मरी से कि जे छत्तीसगढ़ के ये गीत लगा थे उससे महू गाऊँ। धीरे धीरे मोर मुलाकात अचानक श्री परमार जी से होगी, श्री
1: नारायण लाल
0: मुकिम
1: जी
0: जी से,
1: परमार।
0: नारायण परमार जी से, जब इकर मन से हुई तब ये मन, जब मुलाकात करते मन के साथ था वो मन दोनों एक प्रोफेसर इस एक जने शिक्षक इस, तब मोर मुलाकात हुई तो गड़बड़ से मैं पूछो कैसे करे जाए कैसे लिखते पूछो मैं, तो मुकिम साहब बोला गा के बताए, परमार जी बोल के बताए, हमारे गुरुदेव से शिव प्रसाद जी पांडे हमला 8वीं पढ़ाई हिंदी पढ़ाए, मगर हिंदी पढ़ा पर छत्तीसगढ़ी ज्यादा बोले, अब मैं छत्तीसगढ़ी बोले बोला ऐसे लगे ये बोली में ये भाषा में मिठास ज्यादा हवे, बोला ऐसे लगे तो बोला कि मैं मीठ बानी ला गुरतुर ला का मैं कविता में लिख सकता हूँ, ऐसे मन में मोर विचार आया, बाद में धीरे धीरे मैं छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखना शुरू करे, ऐसे मोर
1: एक
0: साथ
1: आठ ठो
0: हुई।
1: कविता लिखाए जिन वो बखत के रहा है कुछ।
0: हाँ वो उस समय जो कविता एक था लिखे रहे हो तेल बता दो, मैं किसानी के दिन एक जन कविता लिखे रहे हो, जन बादल गरजत है भैया, बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आ गए, कार गांव में रहे तो क्या करते, बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आ गए, चेत लगा के खेत जोत वो अब पानी के दिन आ गए, ऐसे तो सुखा डबरा तरिया मन नदिया लबालब भर जाही, हरियर लुगरा के पहिन के जंगल रह रह के मुझ, बादल हा वरदानी आगे मितानी के दिन आगे भैया, बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे, खेत बताबो बीजा बोवो, खेत बताबो और बीजा बोवो, नागर बैला ला धोबो, नागर बैला ला फिर धोबो, मेहनत के आगे दुनिया झुकते, मेहनत के आगे दुनिया झुकते, आलसी मन जिंदगी भर रुकते, जुन्ना धान न आगे भैया, बादल गरजत है भैया किसाने के दिन आगे भैया, किसाने
1: किसानी
0: के
1: के
0: दिन
1: दिन
0: आगे।
1: आगे, क्या बात है। एक छत्तीसगढ़ी बोली इतना मिठास है, में इतना गुरतुर बोली है। एक बार आप मन के लेखन जब आरंभ होइस, चालू होइस, तो ये लेखन कार्य और आगू कैसे बढ़िस, बोला
0: हाँ
1: बताते हो।
0: मैं अब फिर कहा हुई कि कवि सम्मेलन होने लगिस धीरे धीरे, और जब लोग मतलब पता चलिस बोर एक लाभ ये मिलिस पंजाबी हुए के, हिंदी तो ठीक है मगर वो छत्तीसगढ़ी में घलो कविता लिखते और मंच में सुनाते, तो ये मन अपन कवि स्वर में मोला ले जाना शुरू करे, अब मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो हिंदी कविता पढ़ो, और कई बार तो हिंदी कविता जब पढ़ लो तो कहे नहीं छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो, तो छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो सब मन सुने तो मन नारा लगाए छत्तीसगढ़ी कविता सुनाओ छत्तीसगढ़ी बोलो, ओकर कारण मैं धीरे धीरे समझ गए हो का बर की मैं जब बोलो तो वह पंजाबी ट्यून आए, तो आदमी मेरे को आनंद ले है ना, बोला अच्छा लगे कि चलो यही बहाना ले मोर बात तो पहुंचा थी, जाने अनजाने में छत्तीसगढ़ आंदोलन के एक टन अंग महू बन गयो, जाने अनजाने में काबर की उस समय मोले याद है कोदूराम दलित जी, श्री दानेश्वर शर्मा जी, हमार बसंत दीवान जी, रामेश्वर वैष्णो जी, ये सब मंच में आ चुके रही हैं, लक्ष्मण मसूरिया जी ये सब मंच में आ चुके रही, अब नया वाला में वो सब मुकुंद कौशल मंच में आ चुके रही हैं, ऐसे आई तब ये मन भी छत्तीसगढ़ी पढ़े साथ में हिंदी पढ़े कविता पढ़े, काबर की जनता के मांगनी से लोक साहित्य ला लोक तक पहुंचाए बर, लोक भाषा का उपयोग करना बहुत जरूरी है इसे, चाहे वो बोली हो चाहे भाषा हो, मगर मगर आप अपन बात पहुंचाना है उकरे मन के भाषा में, जब आप गुठियाऊ तो उसका दिल में वो भाषा उतर जाते।
1: तो सुरजीत जी, कवि मन के आप मन बात करे हो, बड़े बड़े कवि मन के बात करे हो, और संग में आप मन के कवि सम्मेलन मन में जाना होत रही से, अब वो छत्तीसगढ़ के वो मंच जिन मांग करत रही कि हम छत्तीसगढ़ी भाखा बोली में कुछ सुनना चाहत हन, तो एकाध और कविता सुने के मन हुआ थे जिन मंच से हुंकार के रूप में आप मन छत्तीसगढ़ी संगवारी मन ला।
0: व्यंग भी लिखो हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी में भी, तो मैं कहा छत्तीसगढ़ी में व्यंग गजल लिखियो, मैं एक अपने ऊपर लिखियो सियान होगे, तो मैं एक बात लिखियो का लिखियो, सब मन कथे मोला सियान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, नवा जमाना के लड़का मन का जाने, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, सब जन कथे मोला सियान होगे, करिया केस चल दिस सुफेद होगे, करिया केस चल दिस सुफेद होगे, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान होगे,
1: क्या बात है।
0: पारा मोहल्ला में हम

0: मर सम्मान हो गए, दो चार दिन के यह मेहमान हो गए, सब जन कथे मुला, सियान हो गए चढ़ गए, आंखी के ऊपर चश्मा पावर वाला, डोकला ला लगिस बोहा हम जवान हो गए,
1: क्या बात है,
0: हम जवान हो गए दो चार दिन के, हम मेहमान हो गए, बुढ़ापा आयस घर के सुर बदल गए, देखत देखत मतलब इंसान हो गए,
1: क्या बात है।
0: देखत देखत मतलब इंसान हो गए, सब जन कथे मुला सियान हो गए, दो चार दिन के ये हम मेहमान हो गए।
1: क्या बात है, इतना हल्का फुल्का ढंग ले चालू करके और इतना गूढ़ रहस्य में आप मन पहुंचता हो, और साथ में व्यंग के वो कहे जाए कलेवर वो आप मन के लेखन में आते। आप मन एक साहित्यकार हो जिन हिंदी में भी लिखते, जिन छत्तीसगढ़ी में भी लिखते, व्यंग भी लिखते, कविता भी लिखते और बहुत चीज गुणत रही थे। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, खासकर ऐसे लेखक मन के प्रतिनिधि बन के जिन युवा साहित्यकार मन लिखना आरंभ करे हैं, चालू करे हैं और आगू बढ़ना चाहते हैं कला लेके, विषय के चुनाव कैसे करे जाए?
0: एक बात ला, नवा पीढ़ी के युवा मन ला ध्यान रखना चाहिए कि हमार आस पास जो घटना दिन प्रतिदिन घटत जात, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो मतलब देखना चाहिए कि कौन से विषय ला हम चुनन और ओला हम प्रभावपूर्ण बनान, तेकर प्रभाव हमार नवा पीढ़ी पर पड़े। काबर के ये नवा पीढ़ी ला अगर हमला सही रास्ता में ले जाना हवे तो हमला बहुत ध्यान देना पड़ी। काबर के अभी जो परिवर्तन होते, टीवी देखा था, मैं कई प्रकार घटना ला देखथन, हम अखबार पढ़थन, कई जन घटना ला पढ़थन, खास करके युवा पीढ़ी ला अखबार ला लगातार पढ़ के और कई प्रकार जो पत्रिका थे तेला पढ़ के अलग अलग विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और जब वो विषय के बारे में बोला मालूम हो जाए, पूर्णतः ऐसा लगे अब मैं ये जानकारी बोला मिल गए और मैं एक ऊपर कहानी कविता लेख निबंध रिपोर्टाज लिख सकते, तब लिखना चाहिए। काबर की बिना अनुभव के ते लिखवे तो वो उसने हुई जैसे रेत के घरौंदा होते। लिखे के समय बात अब ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा ऐसे हो जो लोग मन तक पढ़े तक पहुंचे, सरल होए, सहज होए, मन में उतर जाए। अगर थोड़ बहुत भी तुम क्लिष्ट करो, काबर की तुम्हार जो लिखे हो ते अखबार में जब छपी तो तुम्हार नहीं रही, वो जो पढ़े थे तेकर हो जाए। तब अगर गांव वालों मन पढ़ी तो गांव वालों मन लगना चाहिए कि नहीं ये आदमी हमारे दिल के बात करे, हम पढ़त हैं, हम लोग पढ़े में अच्छा लगा थे, वो लोग कठिन नहीं लगना चाहिए। अखबार मन के भाषा जो हवे जो अखबार में छपत है कहानी कविता लेख निबंध, और जो गांव वाला मन या शहर वाला मन पढ़ते उमन भाषा घलो सिखाते। अगर उमे थोड़ बहुत भी गड़बड़ी हुई तो आने वाली पीढ़ी भी वही भाषा ला बोली, जैसे आजकल हम देखते हैं कई प्रकार के भाषा ला मिला के बोलते, छत्तीसगढ़ में बोलते। हाँ एक बात है, हम कोई चीज ला ग्रहण करे पर इनकार नहीं करन, कारण हम बाजार जाते हैं तो हमारे जेब में चिल्लर रही तो व्यापार करे में लेन देन में हम लोग सुविधा हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: उसने हम अगर अलग अलग प्रकार के भाषा जाना था तो हम कहीं अलग अलग जाबो देश अपन पर तो वो भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं, मगर अपन भाषा अपन भाषा है। और नौजवान पीढ़ी ला अपन भाषा ला बिल्कुल ध्यान से जानना पढ़ना चाहिए, परखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए।
1: सुरजीत जी, इतना अच्छा सरल भाषा में आप मन समझा दो कि एक लेखक के का दायित्व तो होते, जिन पढ़ैया है जिन सुनैया है ओखर बर, ओखर प्रतिनिधि कविता के रूप में एक कविता आऊ हमर संगवारी मन ला सुना देते हो तो आप मन जिन लिखे के नियम बताए हो वो स्थापित हो जाती हमारे कार्यक्रम में।
0: मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, अभी एक तरीका कैसे पहुंचे जाए, नया पीढ़ी कैसे पहुंचे, का समझ को पहुंचे, विषय ला कैसे ले, एक विषय के चयन में करे वो विषय के ऊपर वो कविता ला सुनो।
1: स्वागत।
0: दिया चारों खुट अंजोर बकरा थे, दिया ये बहुत सरल हमारे बात कही देता है, अंधेरा हट गया जी दिया जला दे, मगर अगर पीछे कारण लग में बता तो दिया चारों खुट अंजोर पकड़ाते, दिया के बाती असर जल के देख,
1: क्या बात है,
0: दिया के बाती असर जल के देख, अरे जाड़ा लाहो लेवत हवे चल के देख,
1: क्या बात है, क्या बात,
0: जाड़ा लाहो लेवत है चल के देख, बिना गर्म कपड़ा के निकल के देख, बिना गर्म कपड़ा के निकल के देख, अरे जिंदगी में कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख हुए, जो बात आप कहा हो ये नौजवान पीढ़ी समझे कोशिश नहीं करते, तब मैं कहता हूं जिन

0: जिंदगीमा कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख हवे, चिखला पानी में थोरकुन चल के देख।
1: का बात का बात,
0: चिखला पानी में थोरकुन चल के देख। अरे फोकट में सेखी झनमार, फोकट में सेखी झनमार, तेया भैया घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख।
1: का बात का बात,
0: घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख। और गरीबी गरीबी केहले का होही,
1: का होही
0: गरीबी केहले का होही, समय के संग ते खुदला बदल के देख।
1: का बात,
0: समय के संग ते खुदला बदल के देख। और दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे, दिया के बाती असन जल के देख।
1: दिया के बाती कस जल के देख। संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन, सियानी के बखत में भी जब ये कविता मन ला पढ़ा थे और हमर मन ले गोट बात करा थे तो उनखर मुखड़ा हा चमका थे, ऐसे जैसे दिया बरत है ओखर अंजोर बगरत है। सुरजीत जी, चलत चलत एक दो छोटे छोटे बात और जानना चाहूँ कि सब लयिका हमन ला प्रिय होते, मयारुक लगते, सब अच्छा लगते, लेकिन कोई ऐसे रचना आप मन करे हो जिला करे के बाद बहुत संतोष होए हो ही।
0: हाँ।
1: तो वो रचना के बारे में बताओ, अंश सुनाओ।
0: आजकल जो चलत है बाजार में, मैं दो चार जगह मतलब जाए के मौका लगी, गुरु परंपरा देखियो में है, गुरु शिष्य के परंपरा देखियो, तो मैं याद करत रहा हूँ कि वो पुराने समय में एकलव्य और द्रोणाचार्य के संबंध कैसे रही से। आज जब पूरा समय बदल गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परंपरा भी बदल गए, लेने देने के जो चलत रही से, अब वो परंपरा दूसरा ढंग के हो गए, तब आज के गुरु भी कैसे ओकर अनुसार बदल गए। बात में लिखियो में है, माँ के ऊपर एक फिर कविता लिखियो। बहुत पूरा हिंदुस्तान भर में मैं कई कवि सम्मेलन में गया तो लोग भर माँ के ऊपर कविता सुनाते। मैं कभी पिता पिता के ऊपर भी कविता लिखे रहे हो, तो मैं जो माँ के कविता लिखे हूँ वो में मैं एक बात लिखे हूँ, वो आप लोग सुनाना चाहता हूँ।
1: स्वागत।
0: दाई ते मोला जन्म दे, बने करे पढ़ाए लिखाए, पाँव में खड़ा करे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे। दाई मैं जानत हूँ पढ़ लिख के मैं एक दिन नौकरी करूँ, पढ़ लिख के एक दिन मैं नौकरी करूँ, और मैं सच बताऊँ दाई मैं अब देख ले बड़े अफसर बनूँ, और जब बनूँ और जब वापस आऊँ दाई तो तोला पहले प्रणाम करूँ। और एक बात बताऊँ दाई ते मोला अभी उंगली पकड़ के चला था, मैं जब बड़े हो जाऊँ ना तो उंगली पकड़ के मैं चला।
1: क्या बात है,
0: तो उंगली पकड़ के मैं चलाऊँ दाई ते मोर बहुत सेवा करे ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूँ दाई मोला भी मोर दाई दादा के सेवा करे के मौका दे भी। मैं बतात हूँ मैं ऐसे मौका ला हाथ दे जान नहीं दूँ, मैं बतात हूँ मोर दाई मैं तोर सेवा पर प्राण दे दूँ और सेवा करूँ। मोला दिन याद आई मोर रात याद आई, जब भीजे कपड़ा में ते सुतत रहे और सुखम मोला सुखा सुलात रहे। दाई वो दिन मोला याद है, मैं तुला लेप तो लई में सुनाऊँ और मैं तोर पाँव ला दबाऊँ दाई तोर पाँव ला दबाऊँ।
1: क्या बात है सुरजीत नवदीप जी, ऐसे लगत है बातचीत चलत रहा है, आप मन के कविता पाठ चलत रहा है, हमन सुनत रही गुनत रही और ओखर आनंद कभी खत्म मत हुए। चलत चलत आखिरी सवाल, बहुत लंबा यात्रा एक लोक साहित्यकार के रूप में आप मन करे हो, लेकिन फिर भी ऐसे लगते कि अभी कुछ बाँचे है, अभी कुछ और करना है, का करना चाहत हो एक साहित्यकार के रूप में आप मन के का संकल्प है?
0: मैं चाहत हूँ मोर रात रात जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला छत्तीसगढ़ के सरकार हा अपन भाषा बना है, राजभाषा बना है, आठवीं सूची में ओकर नाम आ जाए ताकि आने वाला पीढ़ी है छत्तीसगढ़ी में ही लिखे पढ़े बोले, परीक्षा होए और ओकर मल्ला वही मन में नौकरी भी मिले। अपन राज हो गए, अपन भाषा अपन बोली अपन होना चाहिए। मोर रात रात मोर मन में विश्वास भी है एक दिन ऐसे आई जब आठवीं अनुसूची में हमारे छत्तीसगढ़ी ला ले जाही, सरकार मानी हमला मान्यता मिली, तब मोला प्रसन्नता हुई, भले मैं रहूं चाहे मत रहूं मगर मैं होकर बर दुआ करा तक।
1: सुरजीत जी जब प्रसन्नता होते मन प्रफुल्लित होते तो साहित्यकार कविता करते। चलत चलत चार लाइन और कुछ सुना देते हो।
0: मैं दाई लगे हो दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ, दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ लड़ाई के मैदान में, दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ जो वचन दे रहा हूँ अपन बात ला निभाए हूँ, देख ले युद्ध के मैदान में मैं गोली पीठ में नहीं छाती में खाए हूँ, पीठ में नहीं छाती में

0: सब मतलब दिखाए हूं दाई, मोला याद है तोर वचन तोर बात अभी तक मोर दिल में उतर गए है। सच बताओ दाई, तोर बात है बात नो है वचन है, कोई कोई लेकर निभाते वही ला मैं निभाए हूं।
1: का बात है का बात है। साहित्यकार अपन हिसाब ले भी सिपाही होते, वो कलम के सिपाही होते। ऐसा हमार छत्तीसगढ़ी भाखा के बोली के लोक साहित्यकार सुरजीत नवदीप जी मन आज हमार पहुना बनिन ये मंच मा, जेखा नाम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। हमर शुभकामना है कि उनका साहित्य यात्रा अभी चलते रहा है और हमर ला मिले प्रसादी के रूप में अच्छा अच्छा कविता, अच्छा अच्छा बोली, अच्छा अच्छा भाखा। सुरजीत जी, आज आप मन हमार पहुनाई ला स्वीकारो, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमर संस्कृति हमर साहित्यकार, ये क्रम में अभी आप मन वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप ले समीर शुक्ल के होए ये गोठ बात सुनत रहे। एकरे संग मोर भुइया के ये अंकी है सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा।
1: 2 MHz पर 9 बजे हैं और अब हम सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया था जैस्मीन सैंडलाज ने और इस गाने में रैप किया था रिबेल ने। इस गाने की लिरिक्स लिखी है जैस्मीन सैंडलाज ने और रिबेल। म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का।

0: सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सरैया की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। इस गाने को लिखा था प्रिया सरैया ने, इसके म्यूजिक तैयार किया है सचिन जिगर ने और फिल्म है अ जेंटलमैन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना। ओम शांति ओम फिल्म से सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना बयां कर रहा है लाइफ की एक ऐसी फिलॉसफी जो बनाएगी आपके हर दिन को खास। शान और अनुष्का मनचंदाना की आवाज में गोलमाल 3 फिल्म से कुमार के बोल म्यूजिक है प्रीतम का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके

आई। हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

मन हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944।

लक्ष्मी। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

के बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर 9:55 होने वाले हैं और प्रादेशिक समाचार के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र, स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीईओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान आज विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। रायपुर के चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य स्तरीय पुलिस अकादमी में 33 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का कल शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नैतिकता, संवेदनशीलता और जनता का विश्वास पुलिस सेवा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कानून व्यवस्था के साथ समाज की सुरक्षा और सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। समारोह में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से आज प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुल के निर्माण के कार्यों की धीमी गति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुकमा जिले में रेत खदानों का आवंटन अब ई नीलामी से किया जाएगा। शबरी नदी स्थित 4 हेक्टेयर क्षेत्र की खदान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया MSTC

पोर्टल पर होगी आवेदन 17 से शुरू होकर 23 जून तक लिए जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी। इससे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गरियाबंद जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने 30 बसों की जांच कर दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया। चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जबकि अनुपस्थित 45 बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 5 गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीईओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

रोटी, कपड़ा और मकान जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं। 2 जून की रोटी के बाद दूसरी चीजें भी अहम हो जाती हैं। मेहनत से ही इन तीनों को हासिल किया जाता है। पेट में रोटी और तन पे लंगोटी के बाद सिर पर एक छत की जरूरत होती है। एक लंबे संघर्ष के बाद जाकर कहीं पूरा होता है अपने घर का सपना। इस कल्पना को साकार करने के लिए अब सरकार कई योजनाएं लेकर आई है, उन्हीं में से एक है स्मार्ट रजिस्ट्री।

छत्तीसगढ़ में भूमि और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक बनाने के लिए स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम से समय की बचत भी होती है और ये जन सुविधाओं

0: का भी पूरा पूरा ध्यान रखने में सहायक है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री पर स्टैम्प ड्यूटी यानी पंजीयन शुल्क में 50% की विशेष छूट दी जाती है। इस स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली की और भी कई विशेषताएं हैं। आप हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय।
1: पहले घपला उपला होतरी से काकरो जमीन काकर खाता और कोई खड़ा होके बेदारतरी रजिस्ट्री भी हो जाती। आज ऐसा क्रांति आज राजस्व मंत्री और हमर पंजन विभाग के सहयोग से हमन एमा 10 क्रांति लाए हन कि अब ऐसा कोई फेक रजिस्ट्री नहीं होने वाला है और रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण हो जाएगी। 1 घंटा भी नहीं लगे, रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण भी हो जाएगी, एक भी व्यवस्था हमन करे हैं।

0: भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने ये माना है कि पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं देने में छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम बेहद प्रभावी है। अब राज्य के स्मार्ट ऑफिस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब सिर्फ एक राज्य की पहल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक दिशा बन रहा है। माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का कहना है,
1: नवा रायपुर में पहले परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का, और इसके तहत 10 अभी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसे स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में और इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी। व्यक्ति सरकारी जो रजिस्ट्री कार्यालय वो भी चलता रहेगा, यह भी चलता रहेगा। दोनों विकल्प जनता के पास उपलब्ध रहेंगे। जनता से कोई भी अतिरिक्त चार्ज पंजीयन के लिए नहीं लिया जाएगा।

0: देश का पहला आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला समय 4 से 6 घंटे होता था, जो अब घटकर 15 से 20 मिनट रह गया है। और ये संभव हुआ है आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम की वजह से। नए स्मार्ट कार्यालयों में आरामदायक लाउंज, एसी, फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, हेल्प डेस्क और स्वच्छ डिजिटल वातावरण की सुविधाएं हैं। यहां टोकन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले के कारण बिना किसी परेशानी के तेज और पारदर्शी प्रक्रिया से काम होता है। इस सिस्टम में ऑनलाइन दस्तावेज, कैशलेस भुगतान और रजिस्ट्री के बाद सीधे मोबाइल पर अपडेट और खसरे में ऑटोमेटेशन की सुविधा है।
1: मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। मैं उपपंजीयक कार्यालय नवा रायपुर में उपपंजीयक के पद पर पदस्थ हूँ। यह कार्यालय स्मार्ट पंजीयन कार्यालय है। इस कार्यालय में लोगों के लिए पंजीयन की तीव्र एवं पारदर्शी सुविधा शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ

सामान्य कार्यालय में जहाँ वेटिंग हॉल और शौचालय और अन्य सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं रहती, लेकिन इस स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों के लिए इंतजार करने के लिए वेटिंग हॉल रहते हैं, अलग से फीमेल मेल टॉयलेट अलग अलग उपलब्ध हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन का कार्य किया जाता है, जिसमें पूर्णतः पारदर्शी और तीव्र प्रक्रिया का

यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन का कार्य किया जाता है और जिसमें पूर्णतः पारदर्शी और तीव्र प्रक्रिया का NGDRS के द्वारा उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ इस छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर के अतिरिक्त रायपुर के विविलन टावर में, सड्डू में, अभनपुर, हिल्दा और रायगढ़ जिला में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय बनाए गए हैं। साथ ही और भी नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का बनाया जाना प्रस्तावित है। स्मार्ट पंजीयन से क्योंकि प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है, इसलिए यह पूर्णतः पारदर्शी है और ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन होता है और EKYC के माध्यम से पक्षकारों की जांच होती है। साथ ही तुरंत नामांतरण हो जाता है। जैसे ही पक्षकार क्रय विक्रय के दस्तावेज का प्रस्तुत करते हैं, पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, वैसे ही वह नामांतरण उस दस्तावेज का नामांतरण भी हो जाता है, पक्षकार के नाम से वह संपत्ति आ जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया जो है बहुत तीव्रता से संपन्न होती है और साथ ही पक्षकारों को उनके संपत्ति में नाम भी है उस टाइम सेम दिन आ जाते हैं, तो की संभावना तो लगभग नगण्य है क्योंकि जो दस्तावेज जो भी चीजें हैं पहले पक्षकार के नाम से रहेगी, उन पक्षकारों वो ऑनलाइन में पहले सत्यापन होता है कि उनके नाम से है जमीन या नहीं है, और उनके नाम से जमीन है वही जमीन को वह बेच पाता है। और जैसे ही पंजीयन होता है तो विक्रय होने के पश्चात में वह जमीन दूसरे पक्षकार क्रेता के नाम पर नामांतरण हो जाता है तो तुरंत ही, तो उससे संभावना तो लगभग नगण्य है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में, खासकर रायपुर में अभनपुर, तिल्दा, नवा रायपुर, बेबीलोन टावर और सड्डू में है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रारंभ हो चुका है।

0: छत्तीसगढ़ के स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालयों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक अनुकूल वातावरण अत्यंत सराहनीय है। स्मार्ट रजिस्ट्री की सुविधाओं के कारण नागरिक खुश हैं। जटिल प्रक्रियाएं अब आसान जो हो गई हैं। इतना ही नहीं, अब यदि कोई चाहे तो घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भी कर सकता है। आधुनिक तकनीक पर आधारित स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली अब हर नागरिक की साथी बन गई है।
1: मैं प्रवीण शुक्ला बलौदा बाजार का निवासी हूँ। मैंने 3 दिन पहले रजिस्ट्री कराई और 10 मिनट के अंदर ही नामांतरण हो गया। इस प्रक्रिया में 5-6 महीना लग जाता था, समय ऊर्जा और पैसा भी लगता था, वो मात्र 10 मिनट में हो गई। मैं इससे अचंभित हूँ और सरकार के इस कदम से बहुत खुश हूँ। सरकार का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा, ये एक नई क्रांति है। आई एम ए हैप्पी कस्टमर ऑफ विष्णुदेव सरकार। और मैन्युफैक्चरर जब भी कंज्यूमर से मिलता है, कंज्यूमर को फायदा ही होता है। छत्तीसगढ़ की जनता को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।

0: स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का एक ही मूल मंत्र है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इसी तर्ज पर प्रदेश भर में 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने छत्तीसगढ़ में सुशासन का एक नया अध्याय लिख दिया है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ बन गया है नेशनल रोल मॉडल। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का सपना पूरा होते ही रजिस्ट्री के अनुभवों में एक बड़ी क्रांति आई है। जमीन के क्रय विक्रय की जानकारी भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो गई है। इस बारे में भारती शर्मा बताती हैं।
1: सबसे पहले जरूर ऑनलाइन भुइया में जाकर उनकी वेबसाइट रेवेन्यू CGNIC इनमें जाकर ऑनलाइन भुइया में जाकर सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन में संबंधित उपपंजक रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उपपंजक कार्यालय में उपस्थित होकर वहाँ पे मतलब प्रोफार्मा में एक निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी भर के संबंधित व्यक्ति की जो आवेदन किया है उनका और वर्ष रजिस्ट्री का वर्ष संभव हो तो रजिस्ट्री तारीख जैसी जानकारी देने से और निर्धारित शुल्क ₹100 जमा कर प्रति वर्ष ₹100 जमा करने के पश्चात 2-3 दिन में उक्त खसरे की जानकारी उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी जो प्रॉपर्टी वो ले रहे हैं। भुइया पोर्टल में जाकर ऑनलाइन जांच के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है जो रेवेन्यू CGNIC इन, उस पर जाकर ऑनलाइन खसरा नंबर या उस व्यक्ति का नाम डालेंगे तो अभी वर्तमान में कौन है उसका स्वामी ये पता चल जाएगा। भुइया पोर्टल ये बहुत उपयोगी चीज है। ये तो एक भुइया पोर्टल जो मैं बता रही हूँ रेवेन्यू CGNIC वाला, इसको तो कोई भी व्यक्ति यदि डालेगा ये वेबसाइट पर जाके यदि देखेंगे ना सर्च करेंगे तो ये दोनों तरह से सर्च हो जाता है। एक तो उस व्यक्ति के नाम से जिसकी इनको सर्च करना है जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दूसरा खसरा नंबर डालने से, दो तरह से ये ओपन होता है। दोनों ही तरह से इसको आप देख सकते हैं इस पे जाकर वर्तमान में उसके मालिक कौन है। यदि किसी मूल खसरे का यदि भुइया में चले गए और उसका पंजीयन हो चुका है, मान लो बटांकन हो गया है, तो जो सेल कर रहे हैं उनसे उनका बटांकन नंबर पूछ के, क्योंकि जो नंबर डालेंगे वो भुइया उसका संबंधित खसरे का जानकारी मिल जाता है। यदि कॉलोनी शहरी क्षेत्र में है तो निकाय सीमा में है तो उसका एक विशेष प्रॉपर्टी आईडी होता है, नंबर होता है, उस आईडी को दर्ज करते ही कॉलोनाइजर का नाम और विवरण सामने आ जाएगा। इसके अलावा कॉलोनाइजर का नाम डालकर भी सर्च किया जा सकता है, इससे यह पता चल जाएगा कि कॉलोनाइजर ने वह जमीन मूल रूप से किसे खरीदी थी। और अगर यदि किसी कॉलोनी में 50 प्लाट है तो उसमें किसी एक विशेष प्लाट की जानकारी चाहिए तो क्या करें, ये है जैसे। तो सबसे पहले उस पोर्टल में कॉलोनी का नाम और उसका खसरा नंबर सर्च करना होगा जिससे पूरे कॉलोनी का लेआउट और विवरण दिखाई देगा। सबसे जरूरी बात ये कि सबसे पहले B1 यदि एग्रीकल्चर लेंगे तो B1 देख लें, और फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है तो टैक्स रसीद देख लें, क्योंकि फ्लैट में मालिक का ना हक जो होता है वो तो उस मालिक का ही होता है फ्लैट में, लेकिन टैक्स रसीद में जो वर्तमान विक्रेता है वो उनका टैक्स पटरा है कि नहीं। और एग्रीकल्चर में तो B1 ही है मेन, ये मैं जाकर सर्च करें खसरा नंबर और नाम से, और बाकी 30 साल का सर्च करा सकते हैं उपपंजक कार्यालय से कि पिछले 3 सालों में इन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं कर दिया है। जब भी जमीन खरीदे तो एक बार भुइया पोर्टल में जाके या ऑफलाइन उपपंजक कार्यालय में संपर्क करके और पूरी जांच करने के बाद ही प्रॉपर्टी ले, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को परेशानी ना हो या धोखाधड़ी का शिकार ना हो, अन्यथा भविष्य में कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए सारी जाँच इस प्रकार की करने के पश्चात ही वो प्रॉपर्टी ले।

0: नवा रायपुर में स्थापित आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को द्रुतगामी, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़ भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने के बजाय नागरिक अनुकूल माहौल में रजिस्ट्री की राह सुगम हो गई है। नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों का सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है।
1: नमस्ते, मैं अंजलि तिवारी, उप पंजीयक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सद्दू रायपुर। स्मार्ट पंजीयन की प्रक्रिया में पक्षकार द्वारा NGDRS की साइट में जाकर संपत्ति और पक्षकार का पूर्ण जानकारी भरा जाता है। वह अपने सुविधा अनुसार समय स्लॉट में अपॉइंटमेंट लेते हैं। पक्षकार अपने टाइम स्लॉट में उपस्थित होते हैं, जहां उनका फोटो, EKYC और साइन लिया जाता है। 15 से 20 मिनट में पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है और सुबह में आपके माध्यम से संपत्ति का एग्जैक्ट लोकेशन फोटो के साथ लिया जाता है। रजिस्ट्री पूर्ण होते ही व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में AC की सुविधा, वेटिंग लाउंज, शुद्ध पेयजल, फ्री वाईफाई, हेल्प डेस्क तथा प्री प्रेजेंटेशन काउंटर जैसी मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्मार्ट पंजीयन प्रक्रिया में पेपरलेस और डिजिटल है। यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन आता है, कैशलेस पेमेंट होता है, डिजिलॉकर की सुविधा दी जाती है। स्मार्ट पंजीयन में B1, खंड 1, नक्शा, पक्षकार की ID की जरूरत पड़ती है तथा सुगम ऐप के माध्यम से लोकेशन की फोटो अपलोड की जाती है। उसके उपरांत 15 से 20 मिनट के अंदर उपस्थिति के पश्चात प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है। इसमें केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है। स्मार्ट पंजीयन में ई के वाई सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। EKYC के माध्यम से जो फर्जीवाड़े हो जाते थे, जिसमें किसी और पार्टी द्वारा उपस्थित होके गलत फर्जी रजिस्ट्री करवा दी जाती थी, वो बच जाता है, क्योंकि EKYC से उनकी पहचान कर ली जाती है। सुगम ऐप के माध्यम से एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का लोकेशन पक्षकारों को पता चल जाता है। तो ये सब सुविधाएं उनसे मिली है। साथ में समय की बचत होती है। पहले कम से 1 से 2 दिन मिनिमम लग जाते थे, अब सेम डे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक दिन में अपने पास 50 से 60 रजिस्ट्री कर सकते हैं। रायपुर में अभी सद्दू ऑफिस है, जो श्रीराम बिजनेस पार्क में है, नया रायपुर में है CBD में, और तिलदा नेवरा में एक ऑफिस है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 10 रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन बनाया गया है और साल भर में पूरे रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन ऑफिस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फर्जीवाड़ा नया KYC इंट्रोड्यूस किया गया, KYC पहले नहीं होता था, और डिजी लॉकर की सुविधा देते हैं, जिसमें दस्तावेज वहीं उपलब्ध हो जाता है डिजी लॉकर में।

0: नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। इस पहल से कल्याणकारी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ और भी सशक्त बन गया है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है। स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस सरकार की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम है। इससे नागरिकों के जीवन में सहजता तो आई ही है, साथ साथ उनका सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने सुशासन की एक नई पहचान को स्थापित किया है।
1: पहले हमें रजिस्ट्री के बाद पटवारी के पास जाना पड़ता था, फिर नामांतरण की प्रक्रिया होती थी। अब क्या हो गया है, ये डायरेक्ट हो गया है, यहाँ रजिस्ट्री के तुरंत बाद ही नामांतरण हो जाता है और नामांतरण के बाद B1 में दिखाने लगता है, आपका जो नाम रहेगा वो B1 में तुरंत चढ़ जाता है।

प्रदेशवासियों के लिए ये अत्यंत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देश भर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने राज्य के पंजीयन और मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों की सराहना की है। नागरिक केंद्रित इन सुधारों ने भविष्य की तस्वीर में खुशहाली के रंग भर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम के तहत पंजीयन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण से लेकर सेवा वितरण सुधारों तक की लंबी फहरिस्त है। दरअसल ये सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म की जमीन तैयार कर रहा है, जिस पर खड़ी होगी उज्जवल भविष्य की शानदार इमारत। नागरिक सुविधाओं में इजाफा करना ही छत्तीसगढ़ सरकार की दृढ़ इच्छा है। यही वजह है कि लोकतंत्र में आस्था की पताका थामे शासन, प्रशासन और नागरिक एक साथ बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

उजाले की ओर। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

रायपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 10:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं नए तराने।

गीत आपने सुना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म से। अगला गीत लीजिए, सुनिए। ये गीत हमने लिया है फिल्म दे दे प्यार दे से।

बिड़ला हाउस से ये गीत अभी आपने सुना। और अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय कोरबा के प्राध्यापक डॉक्टर तरुण कुर्रे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ मौसम में धान बीजों का उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ मौसम में दलहनी तिलहन बीज उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 18 जून 2026 और 19 जून 2026 को शाम 7

0: बजकर 30 मिनट से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पापा के गुजर जाने के बाद एकदम अकेला पड़ गया था। कभी कर्ज की चिंता, कभी ब्याज का बोझ, फिर पता चला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। तब लगा कोई अपना भी साथ खड़ा है।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,00,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा, 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड और MSP पर 26,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद से देश के किसानों को मिली मजबूती।
5: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जन प्रसार हेतु जारी।

इस गीत के साथ ही क्रम नए तराने समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 11 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी।

0: करी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुम्दी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुम्दी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुम्गी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा

0: पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब

0: हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
1: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
2: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
3: सू
4: जी,
3: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
4: जी हाँ
3: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
4: जी डॉक्टर साहब।
3: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
4: मैं पूछती हूँ।
2: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
4: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
4: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए।
4: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
4: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
4: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
5: Only four.
4: मेरी तरफ देखो।
5: सू, only four. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
4: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
5: 3 पत्तियां।
4: पत्तियां?
5: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
4: हाँ हाँ,
5: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
4: क्या लगता है?
5: यही कि बस अब तीन पत्ती।

0: पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉनसी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
0: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: जॉनसी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: 2, ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई, जॉनसी ने सू से कहा,
0: सू मेरी दोस्त।
1: हाँ जॉनसी,
0: जरा वो खिड़की खोल दे,

0: देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल सरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
0: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ,
0: हाँ,
2: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
0: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
0: हाँ, हाँ।
3: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
0: थैंक यू
2: जॉन्सी।
0: एक
2: बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
2: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
0: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
1: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
2: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने

0: पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ,
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं,
1: लेकिन सू कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सो
0: हाँ, उन्होंने बना दिया,
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सो बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सो
0: हाँ,
1: मास्टरपीस।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बने। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे।
5: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
6: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
6: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
5: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
6: वीर सैनिकों की जय माला
5: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
6: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
7: सखी सहेली,
6: बॉम्बे टॉकीज़ और
8: सेल्यूलॉइड के सितारे,
6: हम क्या कहें।

0: آپ کو یاد سب ہے ذرا ذرا.
1: مجھے یاد سب ہے ذرا.
2: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर. 11:30 हुए हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से.
3: सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से. आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत.
4: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया. एक सम्मोहक यात्रा.
5: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में.
4: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं.
5: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है.
4: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत.
5: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं.
4: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
6: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार.
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से.

बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।

तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं तेरा पता भी तो नहीं।

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशाज लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने, संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

शान और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे। इस गीत में दिल चाहता है फिल्म का नाम था, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

अभी आप विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11:55 हुए हैं और अब समाचार के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सख्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान आज विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इस तरह से आयोग ने बिजली दरों में 6.23% की औसत वृद्धि की है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यह प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। छात्रों को आवेदन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालयों को उनके यहाँ की आवेदित छात्र छात्राओं की सूची प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्र छात्राओं की गुणात्मक क्रम में मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश देंगे। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी की जाएगी। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लक्षण भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और कबीरधाम जिले के 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत का कार्य करेंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत 15 जून से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईगंज गंडई जिले के संवेदनशील गांव में भी अभियान संचालित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार अभी आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 12 बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंक

0: के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था अनजान ने से लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: गुलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में। कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, एआर रहमान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं, फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे ए आर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा। ए आर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके इस सफर में आपके संग। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नजारे उधर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो अगर, तो शाम क्या हर रात फिर से सवेरा बन जाए। कतरा कतरा कर चलो हम एक कहानी में ढल जाएं। तो इबारत एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दी है और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैसेजेस में आया है।

पहले। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

एक अजनबी हसीना से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज थी। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी ने लिखा, यानी कि बहुत पॉपुलर, इसीलिए शुरुआत इसी गाने के साथ की गई क्योंकि आपकी जो फरमाइश है सर आंखों पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। एक चीज मैं देख रही हूँ कि हमारी जो इबारत है उससे भी काफी मॉडिफिकेशन करके या उससे इंस्पायर होके बहुत सारे इबारत लिखी गई है, कविता लिखी गई है, कुछ पंक्तियां लिखी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। हमारे श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि सुरीला सफर कारवां के हम सफर साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला के इबारतों में आज भी दिल के किसी कोने में छुपी शून्यता को प्रेम की मीठी एहसासों से पूर्ण करने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सच है, उम्र की सीमा बंधन को दरकिनार कर दिल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अनायास ही मोहब्बत की दस्तक दे जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं, मुस्कुरा उठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां अजनबी हसीना तो क्या, अपनी हसीना भी भाव नहीं देती। अगर चाय मांगो तो जवाब नहीं मिलता, खुद से बना लो। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक भी तो जिंदगी में रंग भरती है, ये भी अलग तरह का रंग है। बिल्कुल। साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो वीरान राहों को गुलजार बना देता है वो है मोहब्बत का रंग, और साधारण दिनों को खास बना देता है वो है मोहब्बत का रंग। जब प्रेम दिल में घर कर लेता है तो खतों के पन्नों पर शब्द नहीं भावनाएं उतरती है। यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं

कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नजर में तो बहुत आते हैं। अब जो नजरों को भा जाए, बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत।

आप तो हमसे सवाल काफी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत।

तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियां कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, एसएमएस पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो जरूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती। लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है? साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतजार कर रही हूं आपका मैसेजेस पर।

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही खतों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने ज़माने की खुशबू, वो खत लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है?

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे, और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिखा लिया गया है, और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहाँ चल रही है, वहाँ पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पर, पत्र पर नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की, तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी, जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं, वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से एक खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला, शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई, और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे, और आज कुछ सेकेंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है, ये प्यार मिठास नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूं वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन हैं।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना?

सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है, लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं। क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन आधा कह सकते हैं, कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतजार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि खत लिखना, जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं। एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है, वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं, और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है, मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाए, ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल शामिल होगा, आप बस खत लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं उस गीत के बारे में, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत के स्टार्टिंग में कांच के ग्लास पे जो संगीत इजाद किया गया है आर डी बर्मन द्वारा, वो काबिले तारीफ है, और वो भी अक्सर किचन में कांच के बर्तनों पर ऐसी किसी धुन की तलाश में रहते हैं और बहुत मजा आता है। ये गीत उन्होंने जहन में सोचा था, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यादों की बारात जिस सिनेमा हॉल में देखी थी वो सिनेमा हॉल टूटकर मॉल में परिवर्तित हो गया है, और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपये में फिल्म देखी थी। आज 160 रुपए का टिकट आया था, इतने सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। फैमिली मेंबर्स की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वही है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? जरूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हो, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हो, या कोई पुरानी याद जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है। मुझे लिख भेजिए, इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवे नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताजा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहां जहां उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहां पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाकये याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाजत चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफर में आपका साथ दिया। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप बने रहें विविध भारती के संग।

पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती माँ रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों

दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में पानी की कमी हो रही है और साथ ही जल प्रदूषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है जल, यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग

0: लेने के लिए आज एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े।

0: आकाशवाणी समाचार पेरिस फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
4: यूएनएससी रिफॉर्म वुड बी ग्रॉसली इनएडिक्वेट।
5: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे।

0: इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एस टी बर्मन की तर्ज थी।

0: ये नजर लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को, इस गीत में मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: तो

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती देर भी नहीं लगती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
2: और कोशिश करिए
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
2: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए। एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
2: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहाँ बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़ें, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़ें, जीवनी पढ़ें,
2: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
2: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग्र सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
2: किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है आपकी घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती है और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती है, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
2: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावने।
1: ये तो होता है,
2: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
1: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम, केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
2: जी, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
1: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
2: किस तरीके से इसको समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
1: वाह क्या बात है,
2: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है,
2: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है।
1: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की कही है, रखा है
2: जाती है
1: घरेलू बजट, बाप रे,
2: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में, मतलब एक

0: कोई नहीं हो पाता इस विषय पे.
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना
0: जी
1: वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं।
0: बिल्कुल. और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे.
1: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखें और अभी हम सुन लेते हैं
0: एक
1: गीत।
0: गीत जी.

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी.
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी. तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं, इसको जान लेते हैं. तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है.
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है.
0: हाँ बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी एफएडी ने IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई. इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था.
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल. और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है. और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना.
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है. इसीलिए इस प्रेषण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है.
0: बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
1: बिल्कुल
0: होती
1: खुशी होती
0: थी।
1: कि ना, कि अब चलो ये जरूरतें हमारी जो
0: हाँ,
1: चीज़ें ये
0: हम
1: पूरी हो
0: पूरी कर
1: जाएगी.
0: लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो कितने उन लोगों को इसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को.
0: बिल्कुल।
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना.

0: आरती, महीना तो जून का है।
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए
1: हाँ, इस
0: रखना है।
1: पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे
1: जी
0: श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन, इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे जाने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की, जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है, और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवार

0: के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है और यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल
0: कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल। और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती है, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी
0: आएंगी
1: ही।
0: ही
1: आप ये
0: बिल्कुल
1: नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है ना,
0: हाँ
1: या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी
0: बिल्कुल
1: नहीं है आपको पता
0: बिल्कुल
1: हो उस चीज के ऊपर
0: हाँ,
1: के बारे
0: आपने
1: में।
0: उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना,
1: बिल्कुल
0: आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से
1: जी
0: हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उसके पीछे का जो संघर्ष है,
1: जी
0: पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां हैं, वो हम
1: जी
0: नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे। लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो
0: बिल्कुल
1: जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता,
0: हाँ
1: वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता
0: बिल्कुल
1: है। वो इतना
0: बिल्कुल
1: ऊंचा उठ जाता है
0: कि
1: कि वो
0: कौवा
1: कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो
0: हाँ
1: वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: वो
1: अपना
0: डिस्टर्ब
1: बिल्कुल,
0: नहीं हुआ, अपना
1: हाँ
0: संतुलन
1: अपने
0: नहीं
1: लक्ष्य से
0: बिगाड़ा।
1: नहीं हटा वो
0: हाँ
1: किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि
1: बिल्कुल
0: आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए वहां से
0: हाँ ये होना चाहिए और होता भी
1: जी
0: है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना
1: बिल्कुल
0: आरती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल। और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पूछ दिया और आपने
0: हाँ,
1: एकदम
0: कि
1: वो हो
0: आपके
1: गए
0: पास जादू की छड़ी आई, आपने
1: जी
0: गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और
1: जी
0: ताला खुल गया।
1: बिल्कुल। ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं आपके।
0: हाँ बिल्कुल। और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती,
1: बिल्कुल
0: लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल। और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद
0: फिर
1: फिर से
0: से
1: खड़ा हो
0: खड़ा हो
1: जाता
0: जाता
1: है
0: है।
1: जी। और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि फिर और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
0: तो
1: तो
0: उसका
1: फिर
0: फायदा उठाया
1: बस
0: जाता
1: उसका
0: है,
1: फायदा
0: इसलिए
1: उठाया
0: जो
1: जाता है
0: कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को,
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए कहते
1: तो
0: हैं।
1: इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी
0: हाँ
1: को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए,
0: बिल्कुल सही
1: उसका
0: कहा
1: सामना
0: आपने,
1: करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी
1: बिल्कुल
0: कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो
1: बिल्कुल
0: आप दो टुक बात करें,
1: जी
0: जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है और नहीं तो चुप रहें।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा विस्तार से उसे बताने

0: कोशिशें मत
1: अपनी
0: करिए।
1: सफाई देना
0: हाँ,
1: कोई जरूरी
0: उसको वही
1: नहीं।
0: सफाई मांगी ज्यादा
1: हाँ
0: अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो सीधे ना कहना जरूरी है। उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उस लिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी
1: नहीं
0: चाहिए।
1: देनी चाहिए। होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं,
0: हाँ
1: वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है, या हमारे
1: बिल्कुल।
0: अंदर जो जो समुद्र जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती
1: शांत
0: है।
1: हो जाते हैं, कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है। जब
0: जी
1: आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा है इन बातों में।
0: बिल्कुल
1: और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं, तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं,
0: निकली।
1: क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं,
0: जी
1: और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सहित होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
1: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया, तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं
1: गलत
0: सुनेगा।
1: माने जाते हैं। इसलिए
0: जी
1: किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है, और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
0: बिल्कुल। और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी
1: कह
0: इमोशन
1: दिया,
0: में आके कह दिया
1: हाँ
0: तो फिर आपकी परेशानी आपके
1: हाँ
0: लिए
1: फिर
0: खड़ी
1: वो
0: हो
1: सारी
0: सकती है।
1: परेशानी खड़ी हो जाती है,
0: बिल्कुल
1: फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस
0: जी,
1: वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती
0: अंतराल का
1: कि
0: समय हो
1: अंतराल
0: गया है।
1: का समय हो गया
0: जी
1: है,
0: अंतराल का
1: एक छोटा
0: समय।
1: सा अंतराल लेते हैं।
0: जी

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत
1: स्वागत
0: है।
1: है।
0: तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो, और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए,
0: बिल्कुल सही कहा
1: क्योंकि
0: आपने।
1: ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और हम जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे क्यों देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता
1: बिल्कुल
0: है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना?
1: जी
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार

0: फिर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते
1: कि
0: हैं
1: आपने
0: कि
1: इंतजार
0: शुक्रिया,
1: किया।
0: आपने हमारा इंतजार किया,
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: ये थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज का सामने।
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के
1: दस
0: पास
1: लोगों
0: मत
1: के पास मत जाइए, है
0: जाइए।
1: ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना।
0: देखो।
1: कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है,
1: बिल्कुल,
0: लोग जो है 10 लोगों के पास जा
1: हाँ
0: जाकर पूछते हैं, है
1: हाँ
0: ना,
1: कि हम सही हैं, हम सही हैं।
0: हम
1: अगर आप
0: सही है
1: सही
0: ना,
1: हैं तो
0: आप सही
1: अपने,
0: हैं,
1: बिल्कुल अपने
0: आप
1: दिमाग
0: सही
1: से,
0: हैं, बिल्कुल
1: अपने आप से निर्णय लीजिए, आप
0: बिल्कुल,
1: सही हैं
0: आपका अपना
1: तो
0: निर्णय
1: सही हैं
0: कोई भी हो सकता है,
1: बस।
0: उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो
1: जी
0: आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ, मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना,
1: जी जी बिल्कुल
0: कितना अच्छा है।
1: जी,
0: और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो
1: बहुत
0: कि
1: जरूरी
0: हम
1: है।
0: नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा, हम भावुकता
1: जी
0: में बह जाते हैं, तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते
1: बिल्कुल,
0: हैं,
1: बारीकी से, बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते
0: तब
1: हैं
0: वो कैसे होते
1: तब उनके
0: हैं,
1: चेहरे पे कैसे
0: क्या
1: भाव
0: होता
1: आते
0: है,
1: हैं,
0: ये
1: वो
0: आपको,
1: बहुत
0: हाँ ये
1: जरूरी है।
0: आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि
1: जी
0: आपने जब तक हाँ भरी तब तक
1: हाँ
0: आप बहुत अच्छे थे,
1: जी
0: लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना,
1: बिल्कुल।
0: आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने
1: बिल्कुल,
0: व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत
1: और
0: बनाइए।
1: इसके लिए जरूरी है हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया करते देते हैं, इस चीज के आप ध्यान रखें। और
0: बिल्कुल,
1: जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए,
0: हाँ,
1: क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत आ, आ, कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा,
1: बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है।
0: हाँ
1: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: इस बात का हमें ध्यान रख के
0: सोच
1: बोलना
0: समझ
1: चाहिए।
0: के बोलें, तोल मोल के बोलें। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में
1: जी
0: लगा पाते, और अपना समझकर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में
1: जी
0: आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल।
0: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ, ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में
1: जब
0: आ
1: हम,
0: जाती है।
1: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि अब मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए,
0: हाँ, फिर
1: क्योंकि
0: मैं
1: ये
0: हर दिन,
1: चाटुकारिता में आ
0: हाँ ये
1: जाता है।
0: चाटुकारिता में आता
1: जी
0: है, और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने
1: बिल्कुल
0: वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
1: जी, अपनी
0: और
1: खूबी अपनी खामी हर
0: हाँ
1: इंसान को पता होती है,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: होती
1: है ना।
0: है, और
1: तो
0: मजबूत मन ही वो
1: देखिए
0: जादू है
1: जी
0: जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता
1: बिल्कुल
0: है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है।
1: जी
0: इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
1: बिल्कुल, और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे, मजाक
0: जैसा मैंने आज
1: लीजिए
0: उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ
1: जी
0: करने वाली है, पर
1: नहीं नहीं
0: आरती ने आज
1: आप
0: तारीफ
1: नहीं,
0: नहीं
1: मैं
0: की।
1: तारीफ करती हूँ, तारीफ करती हूँ, लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी उस चीज को,
0: हाँ
1: मैं एकदम सही तरीके से आपकी कि जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती
0: तो
1: हूँ।
0: मैं आगे उम्मीद रखती
1: बिल्कुल
0: हूँ।
1: बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ की।
0: तो चलिए,
1: जी
0: आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम उन्हें एक
1: एक गीत
0: प्यारा सा गीत
1: सुनाए
0: सुनवा दें।
1: जी।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
1: अरे वाह, बिल्कुल।
0: जी, तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
1: हाँ बिल्कुल। और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की।
0: जी
1: विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है।
0: जी, और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
1: बिल्कुल। और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें
0: बहुत सारी चीजें
1: शामिल है।
0: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
1: क्या बात है।
0: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग

0: पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
1: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की, और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
0: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
1: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
1: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती, कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो
0: बिल्कुल,
1: मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और बहुत ही अच्छी बात है ये। अब आज
1: और
0: महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना अपना नया पहचान, अपनी नई पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
1: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने। मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है, दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर
0: बहुत,
1: बात करें हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुनिए।
1: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है,
0: बिल्कुल
1: चाय की तरह।
0: जी,
2: जरा नजरों से कह दो जी,

0: और जब वो आती है मेरे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना,
0: हाँ
1: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय
0: जी जी
1: बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल। और फिर वापस करो ये करो,
1: वो
0: गुस्सा आता है
1: सारी
0: ना उस
1: प्रक्रिया ही
0: समय,
1: शुरू हो जाती है।
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस, सच में।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण
0: जी
1: जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मेरे जो श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: बहुत
0: चमकता है।
1: सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर
0: बिल्कुल
1: चेहरा है ना, चांद जैसा
0: लेकिन
1: हमारा टुकड़ा है
0: जी, लेकिन जब
1: ना,
0: से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है
0: सा
1: कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि
0: जी
1: सच्चाई क्या है।
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं, वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, और एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया मना।
1: रलियामणा
0: जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत, और रलियामणा मतलब सुहाना,
1: सुहाना।
0: यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
1: कहा
0: उसको,
1: कि पहाड़ों को दूर से जब
0: हाँ
1: हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते
0: जी
1: हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर
0: जी,
1: जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे ही
1: अच्छे
0: सही
1: हैं।
0: है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारे श्रोता जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने
1: बिल्कुल।
0: इस चीज को
1: लेकिन
0: समझा।
1: यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो
0: अच्छी लगेंगी। ऐसा
1: अच्छी
0: नहीं है कि
1: ही
0: आपको निराशा हाथ
1: लगेंगी।
0: लगी या कुछ,
1: हाँ
0: आप
1: इस
0: बिल्कुल
1: बात
0: हमसे
1: का
0: मिलिए तो हम आपको
1: वैसे
0: और
1: ही
0: बहुत अच्छी
1: लगेंगे
0: तरह से आपसे बात
1: जैसे
0: करेंगे।
1: हम अभी आपको लग रहे
0: जी
1: हैं। ठीक
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल बिल्कुल।

तो ढोल के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देखने में इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। वहीं
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन
0: जी
1: जाता है।
0: जी
1: सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में
0: जी
1: तनाव
0: देखिए,
1: उत्पन्न।
0: आपका एक आप श्रोता का आप हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया,
1: हाँ
0: उनको इतना ज्यादा इनका बढ़िया उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना
1: बिल्कुल
0: वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है, जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरे इनायत बनी रहे, वो
1: बिल्कुल
0: हमसे
1: बिल्कुल,
0: खफा ना
1: हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: हो। तो भाई,
1: जी
0: अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है
1: जी
0: और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आतिश
0: और
1: श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देश

0: के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
1: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
0: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
1: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लगता लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी। और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले, बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो जरूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, तो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा। और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
0: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।
1: जरूर।

0: करीब फिल्मों में काम किया, खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है, यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली है और मिल भी जाती है, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, आप नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिल दिया दर लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे से सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब, तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं बहिदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए?
1: आदमी का वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
1: वो समथिंग। हाँ

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही, आपकी जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे, मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ, साधना बहुत अच्छे थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो, इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो, ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी, जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं, देखिए लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी, और कहानियां रट्टी पट्टी एक ही के, दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है, एक अच्छी नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो, इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है, और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
0: वो फिल्में देख रहे हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है, प्यासा में। मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी, मेरी फिल्में देखना। तो बोले टोरंटो में देखी। ओह, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं, कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहां के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है। तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं, और दोनों बच्चे मेरे, कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ

0: प्यासा का भी जिक्र आया और साहब
1: हाँ,
0: बीवी गुलाम का भी आया है, साहबी भी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब की,
1: हाँ हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में वो बहुत अच्छा था।

0: वैद्य जी, दिल दिया दर्द लिया में प्रहार साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक
1: थे। बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल चखा।
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे, जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे, और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी, उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ, यानी तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से, ये नहीं क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस

0: वक्त वो इतने ज्यादा उसमें
1: मसरूफ
0: जुड़े
1: से।
0: हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी, मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था ये कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी। और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो, बहुत। और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे।
1: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर
0: हाँ
1: जयकिशन साहब का संगीत
0: हाँ
1: था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि वाली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
0: हाँ मुझे अच्छा लगा था क्योंकि
1: जी
0: वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर
1: जी
0: था, यू
1: जी
0: नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
1: कुछ चीजों ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी हो, कुछ
0: बिल्कुल
1: उसी तरह की वो
0: सही
1: फिल्म
0: सही।
1: है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाएं।
0: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजनी का, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं। तो बोले कोई तो

0: ये ना कंप्लेन करने के लिए, तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
1: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
0: अभिजान।
1: अभिजान। बंगला आपको
0: नहीं,
1: आती?
0: उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
1: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब
0: हाँ,
1: की?
0: पाथर पंचोली देखी थी,
1: अच्छा,
0: उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी
1: जी।
0: मैंने। तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और वो
1: उन्होंने क्या कहा आपके बारे में? उनको
0: उन्होंने
1: कैसा लगा आपका काम?
0: हाँ उन्होंने उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्र चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वही रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइस होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियां प्लास्टिक की चूड़ियां भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
1: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने?
0: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, ये आफ्टर ऑल इज अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए दो दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जे रोकम।
0: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था। मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल, बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं, तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम
0: नहीं,
1: करना?
0: आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, द बेटर डायरेक्टर देन एन
1: कोई
0: एक्टर।
1: यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम,
1: जी।
0: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे, जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो। तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे

0: लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वही था जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो

0: पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुलीन ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हो, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
1: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
0: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से, तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से

0: बात करनी है, कोई यादगार घटना है उस फिल्म से जुड़ी हुई।
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है। तो वो चले जाते हैं शादी करके, जब ठीक हो जाते हैं तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए,
0: जी
1: ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है। तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पे ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं, राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरे स्टार्टिंग दे दीजिए, अब उनके गाना उनका है, तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था तो मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूँ तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यों मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते रहे।
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।
2: वो शाम कुछ

0: कुछ।
1: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
0: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर के सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने, मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीवी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी, वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो 1-2 महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में। हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वही था। ओ रियली, मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप वहां मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया है, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
0: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।
2: झूम झूम ढलती

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघरों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूंकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते, कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ है। इसका नाम है प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील, तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए, हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं, टीचर्स उनको कहानियों से, गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इंप्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, कि इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी,
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: ही बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये दरहोरा सेमई करंजवार खरसोता परमेश्वरपुर हरिहरपुर कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये मेंढारी फोकली महुआ करमडीहा भगवानपुर नवापारा जवाखाण अखोरा कुंदीकला जामदोहर सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर लुंड्रा लखनपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये सकालो घंघरी कुल्हाड़ी कंचनपुर खलीबा पड़ौली किशुनपुर जमीरा डांडपारा पटकुरा दातीढाब घटगांव बरवाली कंडराजा बरिमा पेंट घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो खड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी चट्टानपारा साजापानी कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 100 है। ये लोटान पुरुंगा बनहर सिंघी छाप बेहरामार इंचपारा कंचीरा कोयलार सागरपुर सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर कोयलार गढ़रा परला चोटिया

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 5:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाड़ी माँ मैं पंचू भाई अपन के स्वागत करता हूँ। झोंकाओ जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, गर्मी के बेरा अभी भी हवा है और देखिए तो गर्मी बहुत ज़्यादा करत हवा, तो ऐसे बेरा में हमारा सब जन अपन जो सेहत है ओकर विशेष करके हमारा ख्याल रखना हवा, काबर कि अब हमार जो खरीफ फसल के खेती किसानी के तैयारी हमार किसान भी मन करत हवा और ए बेरा अगर हम अपन जो सेहत है ओकर अगर जतन नहीं करबूँ तो कैसे हमन खेती किसानी के बूता काम ला करबू। आए दिन अपन ला हमार रेडियो के माध्यम से यही कथन, अगर हमन बिना कन खेत खार जावत हन तो थोड़ा कन भात बासी हमन खा के अपन जो खेती किसानी के बूता काम है वो हमन ला करना चाहिए, काबर की खाली पेट अगर हमन कोनो बूता काम करत हन तो कहीं ना कहीं वो हमार जो सेहत है वो सब ज़्यादा नुकसान होकर संभावना रहते हैं। कहूँ भी गाँव गाँव तेरी जावत हन तो रास्ता में रुक के हमारा पानी वानी हमें पीना चाहिए, संगे संग अपन जो सेहत है ओकर विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। अभी का करथन कि बाजार हट जाथन और जो सस्ता मस्ता साग भाजी रहते ओला ले आथन और ला के वही ला रांधन पसाथन, तो संगवारी हो दो पैसा के लालच में हम का करथन सस्ता जो साग भाजी है ओला ला के हम रांधन पसाथन, ओकरों से हम जो सेहत है बहुत ज़्यादा नुकसान घलो होते। और आजकल हमारे जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार है ओकर कतिले एक योजना चलत हवा है, मुहिम चलत हवा कि हमला खेती ला बचाना हवा, खेती ला तभी

मछली संगवारी हो, जब हमन जैविक खेती किसानी करबो, प्राकृतिक खेती करबो। एक बेरा ऐसे रही कि हमारे जो बाबा हवाए ओमन जुन्ना बेरा मन प्राकृतिक खेती जैविक खेती ला ज़्यादा से ज़्यादा करत रही हवाए। और वो बेरा ऐसे रही कि फसल भी अच्छा हुआ है, संगे संग भुइया की उपजाऊ क्षमता भी रहे। लेकिन आज हमन का करतन आधुनिकता में ऐसे बढ़त जातन कि हमन आनी बानी के रासायनिक कीटनाशक के दवाई उपयोग करथन, जेमा हमार सबसे ज़्यादा हमार जो फसल है वाला नुकसान हुआ थे। और एकर संगे संग हमला कोड़ बात तो अपन कर करबेज करबो आवा सुनाथन संदेशा।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।

0: आज ये मंगलवार और मंगलवार के आप अगर है कि हमन जो गांव गांव तरी जा रहा था वहाँ हमन स्थल रिकॉर्डिंग के तहत किसान भाई मन के उनकर अनुभव ला परोस के लाथन सकेल के लाथन और आपन के बीच में परोसन। हमार संगवारी हमार मामा मंगू मामा ये मन करी से ग्राम परसापाली विकासखंड बमरिंडी जिला जानकी चांपा छत्तीसगढ़ और वहाँ के जो किसान भाई मन के अनुभव ला आपन के बीच में परोसथन। कार्यक्रम ला संपादन और रिकॉर्डिंग करे हवाए गोपाल कृष्ण पांडे हमार मंगू मामा। संयोजन और प्रस्तुति हवाए डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के आवा सुनतन संगवारी हो किसानवाड़ी गांव में।
1: स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में एक क्रम में आज हम पहुंचे ग्राम परसापाली विकास खंड बमनेडी जिला जांजगीर चांपा।
2: तो सबले पहली तो श्रीपति रंजना माखीजा जी आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपन ये कार्यक्रम में आए हो हमार किसानवाड़ी गांव में। हमार किसान भाई मल्ला खास करके माई लोगन मल्ला जो उनकी अपन मन के खेती में किसानी मल्ला करत हवे एकल ले अच्छा ढंग से और अच्छा खेती कैसे कर सकत हवे आगो कैसे बढ़ सकत हवे कौन कौन सी योजना के मन लाभ ले सकत हवे और कौन कौन सी योजना चलत हवे ये जमे बात ला आप थोड़ा सा हमार ये नारी शक्ति ला दे के प्रयास करी हो।
3: सबसे पहले तो महंगू भैया आपका और पंचू भैया आपका दोनों का आभार और मेरी तरफ से प्रणाम कि आप किसानों के बारे में इतना सोचते हैं इतना अच्छा आपका प्रयास रहता है। मैं अभी इन बहनों को यही बता रही थी कि विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर वैसे ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं पर उनका लाभ लेकर और अच्छा कर सकते हैं। अभी क्या है कि धान की खेती पर ज्यादा हमारा जो जांजगीर चांपा जिला है ज्यादा उसका प्रयास धान की खेती पर रहता है लेकिन समय ये आ गया है कि अब हम जरूरत से ऊपर उठकर समृद्धि वाली खेती करें कम जमीन से ज्यादा उत्पादन और मुनाफा ले सकें तो उसके लिए अब समय है कि ये उद्यानिकी फसलों की तरफ जाएं। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो छोटे किसान हैं जो एक एकड़ जिनके पास जमीन है ऐसा एक खेमनाथ महिलांगे जी हैं बलौदा के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके पास एक एकड़ जमीन है उन्होंने उसमें ग्राफ्टेड बैगन लगाया।
2: अच्छा
3: और आपको आश्चर्य होगा कि उनको एक एकड़ में से कितना उनको आमदनी हुई होगी आप सोच सकते हैं सारा खर्चा काट के 4 लाख रुपए एक एकड़ से उन्होंने प्राप्त किया।
2: एक पर थोड़ा ताली बजा देगा तो ज्यादा उत्साह हो जाए और आपको मतलब फायदा हो सकता है।
3: तो ऐसे बहुत से किसान हैं हमने 256 किसानों को ये प्रदर्शन लगवाए थे इस बार ग्राफ्टेड बैगन में। तो इस प्रकार की बहुत सी फसलें हैं जिनमें धान की तुलना में इनको 3 से 5 गुना ज्यादा मुनाफा होता है।
2: मतलब धान है धान मतलब रतरा धान ले ज्यादा धनवान बन सकत हो यू बात ला ध्यान रखो कैसे बढ़िया बताई ने ओला अपनाए की कोशिश करो अपन। हाँ तो योजना में कौन कौन से ऐसे फलदार पौधा है सब्जी है एकर उपयोग हमारे किसान भाई लोगन खास कर सकता हूँ।

0: राज्य पोषित उद्यानिकी विकास योजना में समेकित उद्यानिकी योजना है। पहले क्या होता था, यदि हमारे किसान भाई बगीचा लगाते थे तो उनको बोरवेल, फेंस, इंटरक्रॉपिंग इन सब के लिए विभाग की तरफ से अनुदान नहीं मिल पाता था।
1: अच्छा।
0: तो 25-26 से एक नई योजना शुरू की गई जो राज्य पोषित है, समेकित उद्यानिकी विकास। उसमें क्या होगा कि यदि ये बगीचा लगाते हैं तो उसके लिए फेंसिंग के लिए इनको इकाई लागत जो कि 1,08,970 रुपए है।
1: अच्छा।
0: उसका 50% अनुदान के रूप में सीधा इनके खाते में दिया जाएगा जो कि 54,485 रुपए का है।
1: अच्छा अच्छा।
0: इसके साथ ही अभी घेरा तो हो गया, घेरा होने के बाद इनको पौधा लगाना है तो पौधा लगाने के लिए भी इनको 10,938 रुपए का।
1: अच्छा।
0: 25% जो है अनुदान इनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, डीबीटी हम बोल रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, सीधा इनके खाते। अब ये जो मान लो फलदार पौधे लगाते हैं, बड़े पौधे लगाते हैं तो 9x9 मीटर की दूरी पे लगा रहे हैं।

0: 10% जो है अनुदान इनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, डीबीटी हम बोल रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, सीधा इनके खाते। अब ये जो मान लो फलदार पौधे लगाते हैं, बड़े पौधे लगाते हैं तो 9x9 मीटर की दूरी पे लगा रहे हैं, छोटे लगा रहे हैं 6x6 मीटर की दूरी पे लगा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरे साल से फल देंगे, कुछ ऐसे हैं जो तीसरे साल से देंगे, तो तब तक उस जमीन से क्या करें?
1: अच्छा।
0: तो वो जो पौधों के बीच की दूरी है उस पर यदि ये अंतर्वर्ती फसल लगाते हैं तो इनको 100% अनुदान 30,000 रुपए इनको उसमें मिलता है।
1: वाह भाई,
0: ठीक है। और साथ ही साथ इनको नलकूप में भी अनुदान है।
1: अच्छा।
0: यदि ये सामान्य वर्ग के हैं तो 10,000 रुपए इनको खनन के लिए और 15,000 रुपए इनको पंप स्थापन के लिए।
1: अच्छा।
0: ऐसा करके 25,000 रुपए इनको यदि सामान्य वर्ग के हैं तो मिल रहा है।
1: बढ़िया किसान भाई, मन सुना थे, एक लाभ ले भाई, है ना।
0: अन्य पिछड़ा वर्ग से यदि आते हैं तो 15,000 रुपए खनन के लिए, 20,000 रुपए प्रतिस्थापन के लिए, 35,000 हो गया। यदि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आते हैं तो 18,000 रुपए खनन के लिए और 25,000 रुपए पंप स्थापन के लिए हो गया, 43,000 रुपए। तो कुल मिलाकर यदि ये बगीचा लगाना चाहते हैं तो इनको बोरवेल की भी सुविधा विभाग दे रहा है, इनको फल पौधरोपण के लिए भी राशि दे रहा है, फेंसिंग के लिए भी दे रहा है, और यदि अंतर्वर्ती फसल लगाते हैं तो उसके लिए भी दे रहा है, और जो उत्पादन होगा बेचेंगे वो मुनाफा तो इनका है ही है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे किसान हैं जो पहले से भी जिन्होंने बगीचा यहाँ लगाया हुआ है, और जैसे अभी आम महोत्सव में भी उसमें से बहुत से लोग अपने प्रादर्श लेके गए हुए हैं, तो आमदनी का अच्छा जरिया है।
1: तो अभी तक क्या अगर देखे जाए तो जांजगीर चांपा में कतक ऐसे किसान हुए हैं जिन्होंने आपके योजना के लाभ ले लिए हुए हैं?
0: हमने 25-26 में 73 हेक्टेयर में आम ये बगीचे लगवाए हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें से जो बगीचे लगे हैं अभी तो उत्पादन में नहीं है क्योंकि 25-26 में ही लगे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर और कुछ उसके नेक्स्ट ईयर होंगे, लेकिन उसके पूर्व में जिनके यहाँ लगवाए थे उसमें से बहुत सारे बगीचे हैं जो फलन में आ गए हैं, जैसे कि आपके ये बमनीडी ब्लॉक में ही केशरवानी जी के यहाँ है, रमेश देवांगन जी के यहाँ है, और नोमन तिवारी जी के यहाँ है, ये सारे लोग अभी अपने आम के प्रादर्श को आम प्रदर्शनी में लेकर भी गए हुए हैं।
1: बहुत बढ़िया, मोटिवेट करा था आप, उत्साहित करा था, प्रोत्साहित करा था। ये प्रकार ले देखे जाए तो उद्यान विभाग में जो ना आपका कार्य भर दे गए हो, आप तो दो दो जिला कह जाए संभाला था, तो बहुत अच्छा काम करा था अपन। एक बार जो जानकारी दे रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बमनीडीह विकास खंड ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जयश्री पदस्थ हमें आवो योजना के कैसे जानकारी किसान भाई मन दे थे, हमें योजना के लाभ कैसे किसान भाई मन लेते हमें, ये जमे बात ला उनकर सो गोट बात कर लेते हैं। तो जय श्री आप मल्ला, राम राम,
2: राम राम।
1: ये जो बमरी ब्लॉक है कह जाए विकास खंड है, इसमें आपके कितने किसान हुई जो उनके उद्यान विभाग ले जुड़े हुई, खास करके धान के जो फसल लेते हैं हमें, वो मल्ला कैसे वेट वेट कर रहे हैं?
2: यहाँ लगभग 50-60% जो किसान हैं वो उद्यान की फसलों से जुड़े हुए हैं, उद्यान की विभाग से बहुत सारे लाभ उन्होंने लिए। जैसे हमारे अभी तो समेकित उद्यान की विकास योजना चल रहा है, उसी से 15 हेक्टेयर में अभी हम लोगों ने आम और अमरूद और फलदार वृक्ष वगैरह लगवाए हैं, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अभी 36 हेक्टेयर से ज़्यादा में अभी बैंगन की खेती हुई है, और टमाटर की खेती भी 200-250 एकड़ में हुई है, और इस तरह बहुत सारे और भी उद्यान की फसलों में किसान अब उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, इसलिए वो रुझान ले रहे हैं।
1: अच्छा।
2: और धान के बदले उनको जो उससे ज़्यादा इनकम हो रहा है, इसलिए वो उद्यान की फसलों की तरफ आ रहे हैं, और अब उसका रकबा भी बढ़ रहा है, पहले जो कम था यहाँ उसका रकबा अब बढ़ गया है, और अब बहुत सारे किसान इसका लाभ ले रहे हैं हमारे उद्यान की योजनाओं का।
1: खास करके कौन से ऐसे फलोद्यान कति रुझान है हमारे किसान भाई मन के दिखते?
2: आम के प्रति ज्यादा है, आम बगीचा बहुत विशेष रूप से लगाते हैं।
1: अच्छा।
2: और आम का फसल तो बहुत अच्छा लगा रहे हैं, उसकी बिक्री भी यहाँ बहुत अच्छा है उनका, इससे उनको इनकम भी बहुत अच्छा है, इसलिए जो एक दो किसान पहले शुरुआत जो किए उनका इनकम देख के और बाकी किसानों ने भी इसका बगीचा लगाया, अब शुरू किए, और अब बहुत सारे किसान इसका लाभ ले रहे हैं।
1: अच्छा। अगर देखे जाए तो किसान योजना के अगर लाभ लेना चाहते हैं तो कतेक भुइयां होना जरूरी है, क्या मापदंड है कि किसान हाँ ये योजना का लाभ ले सकत हवे, ऐसा कोई पात्र किसान के बारे में बतावा जो ये योग्य बन सकते?
2: बगीचा लगाने के

0: सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो योजना चल रही है वह समेकित उद्यान की विकास योजना, इसके लिए सबसे मिनिमम है आपका एक हेक्टेयर या 2.5 एकड़ बोल सकते हैं उसको। इसके अंतर्गत आपको आप विभिन्न जो भी आपके फलदार वृक्ष हैं आप उनको लगा सकते हैं। इसके लिए पौधा तो आपको मुफ्त दिया जाता है प्रति हेक्टेयर। आपको अंतर्वर्ती फसल उसके अंदर, मतलब आप पौधा लगाएंगे उसके बीच में जो गैप है उसमें आप दूसरे फसल लगाएंगे, हल्दी लगा सकते हैं या और दूसरी कोई दूसरी सब्जी लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: तो उसके लिए भी उनको अनुदान प्रदान किया जाता है 30,000 तक पर हेक्टेयर उसमें भी है। इसके बाद आपको बोरवेल के लिए भी अनुदान इसमें प्रदान किया जाता है और चारों तरफ फेंसिंग के लिए भी आपको इसमें 50% तक का अनुदान है।
1: अच्छा, ये तो आप उद्यान विभाग के फलदार पौधा लगाए के बर योजना के जानकारी दिया। सब्जी पर जैसे कहे हल्दी है और मसालेदार, तो इसमें कौन कौन से सब्जी हमारे किसान भाई मतलब लगा सकते हैं
0: अंतर्वर्ती फसल में? अंतर्वर्ती फसल में हम जैसे काउपी है या काउपी या कोई भाजी वगैरह है या गोभी वर्गीय फसल है आप ये लगा सकते हैं। जो पौधे के जो हमारा मेन पौधा है उसको कवर मत करें, जिससे उसका बढ़वार मत रुके। बाकी जो नीचे फैलने वाला पौधा है आप वो लगा सकते हैं उसमें।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, एक प्रक्रिया का हो तो ही एक बार का कागजात लगत हो ही तो बता देता तो किसान भाई मना जुड़े छे वाला जानकारी हो जाती।
0: इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति और B1 जिसमें आप लगाना चाहते हैं उस खेत का B1 और उस खेत का नक्शा, ये और एक आवेदन आप उद्यान विभाग के अधिकारी के पास आपको जमा करना होगा। फिर वो सेंशन हो जाएगा तो फिर आप उसमें अपना फेंसिंग वगैरह कराएंगे, फिर आप बिल वगैरह लगाते हैं तो फिर आपको उसका अनुदान प्रदान किया जाता है।
1: अभी आयल पंप शासन के ज्यादा करके योजना बर प्रेरणा दे जाते हुए प्रयास करे जाते हुए एकर खातिर आप का करते हो अभी?
0: ऑयल पंप क्षेत्र विस्तार एक अच्छी योजना चल रही है अभी। इसमें किसानों को, हालांकि भविष्य में जो उसके फल से जो लाभ होगा वो अलग है, अभी जो गवर्नमेंट भी उस पौधे का लगाने के लिए आपको प्रति हेक्टेयर जो अनुदान प्रदान कर रही है वो भी हर एक क्षेत्र में उसमें भी अनुदान प्रदान कर रही है। जैसे पौधा तो आपको प्रति हेक्टेयर फ्री में ही दिया जाता है 143 पौधा पर हेक्टेयर, और इसमें भी आपको अंतर्वर्ती फसल और बोरवेल के लिए भी, फेंसिंग के लिए भी और इसमें पंप सेट के लिए भी आपको अनुदान प्रदान किया जाता है, जो कम से कम टोटल मिला के 2.5 लाख के आसपास का अनुदान पड़ता है।
1: अच्छा, अपन तो जानकारी मिली, जानकारी अपन दिया, अपन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तरुण केवट जी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हमें, विकास खंड बमणी सहायक संचालक कार्यालय में पदस्थ हमें, अब आज उनकर सो किसान भाई मन पर का जानकारी है। तरुण केवट जी अपन ला राम राम।
2: राम राम महंगू भैया।
1: आप और किसान भाई मल्ला खास करके माई लोगन मल्ला जैसे कौन कौन सी योजना चलत हुआ राज्य शासन द्वारा?
2: अपन बहुत अच्छा सवाल पूछे महंगू भैया। हमारे राज्य सरकार हमारे प्रदेश के किसान मन पर बहुत अच्छा अच्छा योजना लेके आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 योजना है जेकर बारे में आप मन ला बताना चाहूँ। सबसे पहला योजना के नाम है समेकित उद्यानिकी विकास योजना।
1: अच्छा।
2: एकर अनुदान के रूप में टोटल 1,23,000 से लेके 1,43,000 तक प्रति हेक्टेयर के रूप में किसान मल्ला अनुदान मिली। और इसमें सबसे बढ़िया बात है किसान मन के जो चिंता रही थे कि पानी के और फसल के सुरक्षा के, तो ये दोनों की सुविधा उपलब्ध है इसमें। सबसे पहली अगर कहीं आप घेराव करना चाहता था चेन लिंक फेंसिंग वायर से, तो एक जो टोटल यूनिट कॉस्ट होते 1,08,970 जमा 50% अनुदान है, जेकर से मतलब 54,485 रुपये के अनुदान किसान के खाता में डायरेक्ट जाते हैं। या तो होगा फेंसिंग के और दूसरा है बोरवेल के। अगर कहीं किसान अपन खेत में बोरवेल कराते हैं तो ओला 25,000 से लेकर 43,000 तक वर्गवार ओला लाभ दिया जाए।
1: अच्छा।
2: और तीसरा है अगर कहीं आप फलदार पौधों में लगाए में सबसे बड़ी समस्या ये आते कि तुरंत उत्पादन नहीं हुआ है, तो एक बार हमारी सरकार बहुत अच्छा लाभ दिए पर प्रयास करे है कि इंटरक्रॉपिंग अंतर्वर्ती फसल के रूप में कोई भी सब्जी के फसल जो वाला अच्छा लगते है वो फसल ले सकते है, जेकर से प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये के अनुदान उनकर खाता में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए।
1: अच्छा
2: जी। और दूसरा योजना है मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। यहाँ मेन फोकस है हल्दी और अदरक। हल्दी में प्रति हेक्टेयर 46,000 रुपये के अनुदान किसान मन के खाता में जही और अदरक में 48,800 रुपये के। और अभी यही साल नवा योजना चालू करे सरकार हर, जेकर नाम है फ्लोरिकल्चर।

0: सब प्रोत्साहन योजना।
1: अच्छा,
0: अगर कहीं ए योजना में किसान मन कोई भी फूल के खेती करते, किसी भी प्रकार के फूल के अगर कहीं खेती करते तो उखर चयन करके जो योजना के प्रावधान अनुसार एमा टोटल 37,500 रुपया के प्रति हेक्टर अनुदान के रूप में किसान मन ला दिए जाए।
1: अच्छा
0: जी, और चौथा योजना अभी एकदम नवा नवा योजना है मखाना।
1: अच्छा,
0: मखाना उत्पादन के, मखाना उत्पादन के योजना के अभी प्रावधान कर भी आ गए।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: ये प्रकार ले कहे जाए तो योजना के लाभ हमारे किसान हमें ले सकत हुए, जानकारी दे अपन अपन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मांगो भैया।
1: जय राम राम।
2: राम राम।
1: कहा नाम है अपन के?
2: कुमारी पटेल, परसापाली से।
1: अच्छा, आप मन महिला समूह चलात हो तो महिला समूह में क्या सदस्य हुए?
2: 12 सदस्य।
1: ये महिला समूह जो चलात हो तो के बच्चर हो गए अपन ले चलात?
2: हम लोग को 4 साल हो गए।
1: 4 साल, ये 4 बच्चर में काका करते हो अपन?
2: हम लोग सोसाइटी में काम करते हैं।
1: का काम करते हो?
2: चावल वितरण करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, मतलब सोसाइटी में अब चावल वितरण के काम लग करते हो, तो एक वितरण लग कैसे ढंग से करते हो ये बताओ?
2: सीओ मशीन।
1: अच्छा,
2: दिए हैं उसी से करते हैं।
1: राशन कार्ड धारी मन लब राशन के अनुसार में कितने कतक मिलना है का है उकर अनुसार में, तो के राशन कार्ड धारी हमें अपन के यहाँ?
2: 300
1: है ना भाई?
2: हाँ।
1: तो इला एपीएल बीपीएल कौन कौन से कार्ड होते तेल बताओ अपन?
2: एपीएल है, बीपीएल है और सामान्य कार्ड।
1: अच्छा
2: हाँ।
1: तो इमे कैसे कैसे बांटते हो अपन?
2: सामान्य कार्ड है ना, उसमें हम लोग शक्कर नमक नहीं देते।
1: अच्छा,
2: मतलब पहले से मतलब उन लोग का चावल बस है।
1: अच्छा,
2: शक्कर नमक नहीं है।
1: कतका देना होते?
2: 10 केजी।
1: 10 किलो। अच्छा, और
2: एपीएल एपीएल चावल में 10 रुपए पैसा में देते हैं, 10 रुपए केजी में।
1: अच्छा,
2: किसी का 20 केजी रहता है, किसी का 35।
1: अच्छा, और
2: जिसके जिसके अत्योदय कार्ड है, जैसे कि एक घर के मान प्राथमिकता कार्ड है ना, उसमें जैसे कि 3 सदस्य है, उसमें का केवाईसी नहीं हुआ है, तो एक सदस्य का नाम कट जाता है, तो उसमें 20 किलो मशीन देता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: हाँ। केवाईसी करवा के फिर करते हैं ना, तो फिर उसका 35 केजी आ जाता है। और अत्योदय कार्ड है ना, उसमें चाहे एक व्यक्ति रहा है या 2 व्यक्ति रहे, उसमें 35 किलो ही मिलता है।
1: बताया जाते हैं तौल कर में बड़ा बारीकी ध्यान देना पड़ते, 5 ग्राम और 10 ग्राम लगा ये हिसाब किताब रखते।
2: हम लोग ना चावल का ही 10 केजी 20 केजी 35 केजी किसी का 49 है ना, ऐसे बना लिए रहते हैं। एक बार 10 आता है, 15 आता है, किसी का डायरेक्ट 35 केजी आता है।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो उसमें 5 ग्राम भी एक्स्ट्रा होता है ना, तो कनेक्ट मशीन नहीं लेता।
1: आजकल ओटीपी के माध्यम ले घला मिलते, तो ऐसा कुछ व्यवस्था है आप मन वितरण प्रणाली में लागू करे हो कि नहीं?
2: जैसे कि ना किसी का फिंगर नहीं आ रहा है तो करते हैं
1: मोबाइल।
2: हाँ, अच्छा, ओटीपी से सर। अच्छा, लोग बोले हैं जैसे कि फिंगर का नहीं आ रहा है ना, तो ओटीपी से कर सकते हैं।
1: अच्छा
2: हाँ।
1: ये काम में अपना कोई प्रशिक्षण दे गए हवा है कहूँ? प्रशिक्षण करे बर गए हो का सीखे बर?
2: हाँ, दूसरे पंचायत में गए थे सीखने के लिए।
1: कई दिन का प्रशिक्षण रही हवा?
2: बस एक दिन में सीख गए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ मशीन बिगड़ते कुछ होते तो एक बार को आते अपला ये सुधारे खातिर या बताए खातिर कोई ऐसे
2: ना, ना वहाँ से सर लोग जैसे कुछ भी परेशानी रहता है ना, तो वीडियो भेजते हैं सर यही प्रॉब्लम है करके, तो उन लोग ना ग्रुप में भेजते हैं ऐसे करना है करके, अगर हम लोग से हो जाता है ना तो हम लोग खुद से कर लेते हैं, नहीं होता तो फिर डायरेक्ट आप ही से।
1: चलो अपन से जानकारी लेन अपन ला बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, राम राम।
3: राम राम, जय जोहार।
1: कहा नाम है अपन के?
3: सविता पटेल, मोर नाम है।
1: अच्छा, आप मन के देखा था ना आनी बानी के अचार अथान रखा है वह बरनी माँ, इला कैसे ढंग ले बना था और कब ले बना था इला बताओ आप?
3: मैं हाँ, अभी 3 साल हो गए कृषि विज्ञान केंद्र जुड़े ने, विज्ञान विभाग से जुड़े नाम, तो मतलब वहाँ ट्रेनिंग दिस, तेकर बाद में मैं सोचे कि मैं वहाँ अकेला महिला हो तो मोरो हाथ में कुछ पैसा रहे कि मैं घर में रख के मैं घर के काम कर सकूं।
1: अच्छा,
3: अब पहले से ही मतलब मैं घर में कुछ भी खाना बनाऊं कि अचार बनाते हैं, तब पहले से ही मतलब घर के मन बोला कि मस्त लगते मस्त लगते।
1: अच्छा,
3: तो वो सोचे कि मोर अचार बनाया कि मस्त रही, अटेंडिंग भी ले हैं किसी विज्ञान केंद्र में, विद्यालय विभाग से संपर्क में गए तो वहाँ के मैडम मन कुछ कुछ समझाई कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो एक बाद मैं अचार बनाई, अचार बनाए तो अच्छा बनी, जो भी अगर सर मैडम मतलब मैं देता हूँ, सर मन मैडम मन बहुत पसंद करते थे।
1: अच्छा,
3: पापड़ भी बनाता हूँ।
1: का

0: धान ला चार ला बनाथो आप मन कौन कौन से अचार ला बनाथो?
1: जिमी कांदा के बनाथो, आम के बनाथो, आम के घिसे वाला बनाथो, आंवला के बनाथो। सब्जी में जैसे कटहल है, मुनगा है, कलेरा है, ये सब चीज के बनाथो।
0: अच्छा, आप एकर अलावा कुछ काम भी करथो?
1: एकर अलावा मैं सेंट्रल बैंक में ना पीएम के भी काम करथो।
0: अच्छा, तो ये काम ला कैसे करता? अथान वाले काम ला
1: पीएम के जो काम है सेंट्रल बैंक में, तेहा तो 9 बजे ड्यूटी लगना रहते, 8:30 बजे घर से निकल जाता हूँ। रात के 7 बजे छुट्टी होते, जैसे 7 बजे छुट्टी होते मैं घर आता हूँ, आधा घंटा रेस्ट करता हूँ, हाथ पैर धोता हूँ, फिर उसके बाद में जो भी अचार बनाना है तेला मैं सुबह मतलब लेके धो के मोर जो बेबी हवा है तेला मैं बोल दे रहा था कि बेबी तेरा 1-2 घंटा तक पानी में डुबाबे, उसके बाद निकाल के हवा में सुखा देबे, हवा में सुखाबे तो वह खराब नहीं हुआ, धूप में ज्यादा टाइम में सुखाबे खराब हो जाए। बेबी है 1-2 घंटा डुबा के 1-2 घंटा सुखा के रखे रहते, फिर मैं रात के आता हूँ, फिर बेबी और मैं दोनों जन आम ला काटते हैं।
0: कुल मिला कह जाए दिन के नौकरी करता हो और रात के नोट ला छाप के काम ला करता हो, बना के मतलब अच्छा काम है अपन के। ये प्रकार ले कह जाए तो दोनों हाथ में लड्डू है कह जाए आपके हैं, और ये काम ला आगू बढ़ाना चाहत हो?
1: हाँ, बढ़ाना चाहत हूँ।
0: अच्छा, तो महिला समूह बनाए हो अपन?
1: हाँ बनाए।
0: कहाँ नाम है अपन के महिला समूह?
1: जय माँ शारदा है।
0: कह जन सदस्य हुई अपन के?
1: 12 जन है।
0: 12, तो आपके कौन से पद हवे?
1: अध्यक्ष मैं।
0: अच्छा, अध्यक्ष के नाते ये ला पहली शुरुआत कर डाले हैं, सब ला चटनी चटा डाले हैं, और ये चटनी के माध्यम ले अतका कन समूह बने हुए आप मन के, तो ये ला और चटकदार करना है आप मन के, या थान ला चटनी ला, तो एक बार का आगू के प्रयास है आप मन का सोचा थो? ला
1: और चटकदार करे बा मैं कृषि विज्ञान केंद्र के जो सर है तेकर से मतलब जुड़े हो, तो वह सपोर्ट कर बोला थे, और विज्ञान विभाग की जो मैडम है वह बोला थे कि मैं सपोर्ट कर रहा, जो कुछ भी मदद लगी बोला करबो कहा थे, जो जैसे कि डब्बा पैकिंग वह भी लिए, तो मैं अकेला महिला तो मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ, तो सर मैंने उपलब्ध कराबो कहा थे, तो मतलब बहुत खुशी हुई। मैं बहुत दिन के सोचत रहे कि मोर अचार पापड़ में इतने काम करता हूँ, बावजूद भी आज कोई सर मैडम मोला आके देखत नहीं है, न मोला कोई समझत नहीं है, मैं सोचत रहे, लेकिन किस्मत ऐसे पलटीस कि विज्ञान विभाग के जो मैडम है और ये सर मन है कृषि विज्ञान केंद्र के आके देखी, अब बहुत तारीफ करी, तो मतलब बहुत खुशी लगी।
0: सबसे अच्छा कहे जाए तो आप मन के जो बगीचा है कहे जाए घर के आमा हो जाते, घर के नीमाऊ हो जाते, घर में कटहर हो जाते, पहला अथान बनाना है, ये सबसे पहली अच्छा बात होगी, कच्चा सामग्री आप लोग मिल गए। दूसरा ये है कि अगर मसाला की बात आते तो उद्यान विभाग के सब आए हवे, अम्माई लोगन के अपन के समिति हवे या समूह है, तो ओ मन ला कहो कि मसाला की खेती घला करें, हल्दी अदरक पिलो धनिया ला सब ला लगावे, जेकर से आपके जो मसाला है वह मिल जाए, तो ये प्रयास आप आगू करो, है ना भाई? तो आगू के सोच का है आप मन के तेला थोड़ा बताओ, माई लोगन मन आगू अपन ले प्रेरणा का ले में का संदेश देना चाहता हूँ आप?
1: मोर ये सोच है कि जो मैं अचार पापड़ वाला काम ला करा था, जब मैं अकेला महिला में जब कर सका था, और दीदी मन हवा है कि आन गांव के हवा कि जिला के हवा, तो जब मैं अकेला कर सका था तो उमन काम नहीं कर सका थे, उमन के तो हस्बैंड है, बच्चा है, पूरा परिवार है, लेकिन मैं अकेला महिला कर रहा था तो वो मन भी कर सका थे। अगर नारी ये चाहिए ना कि माला ये चीज ला करना है कि काम ला करना है, तो अगर नारी ठान ली तो काम अवश्य सफल हुई, यही बनना था चाहत हूँ कि नारी मल्ला हार नहीं मानना है।
0: बहुत अच्छा, अपन सो गुड बात करें अपन ला, बहुत बहुत धन्यवाद। तब ये तो हुई इस स्थल रिकॉर्डिंग आधारित कार्यक्रम किसान वाड़ी गाँव में, इस संग दो विदा महंगू भैया के राम राम जय जोहार। ये कार्यक्रम में संपादन और रिकॉर्डिंग रही सब गोपाल कृष्ण पांडे के, और संयोजन और प्रस्तुति रही सब डॉक्टर सुप्रिया भारतीन के।

संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहन किसानवाड़ी गांव में ग्राम पंचायत परसापाली विकासखंड बमनिंडी जिला जांजगीर चांपा संपादन और रिकॉर्डिंग रिसावे हमर संगवारी गोपाल कृष्ण पांडे मंगू मामा संयोजन और प्रस्तुति रिसावे डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के संगवारी हो। कार्यक्रम संबंधित अपन बार एक सूचना हवे, प्रत्येक बृहस्पति और शुक्रवार के संजक 7:30 ले फोन इन कार्यक्रम प्रसारित कर जाते हैं, जिसमें किसान भाई मन बार मछली पालन मुर्गी पालन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए पर हमारे स्टूडियो में पूर्णक रूप में विशेषज्ञ मतलब बुलाथन, जिसमें अपन फोन करके समाधान पा सकत हो। तो यही कड़ी में संगवारी हो, 18 जून बृहस्पत के हमारे स्टूडियो में पहुना आही कृषि महाविद्यालय कोरबा के प्राध्यापक डॉक्टर तरुण कुरे, इकर कर अपन 10:30 बजे लेकर 11 बजे के बीच में सवाल पूछ सकता। पहली बेरा के विषय हवा खरीफ मौसम में

बीज उपचार के तकनीक जोन दूसरिया बेर हवा 11 से 11:30 बजे के बीच में खरीफ मौसम में दलहन तिलहन के बीज उपचार के तकनीक ए विषय के संबंध समस्या के समाधान पाए बर अपन हमर जो फोन नंबर है आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के फोन नंबर के माध्यम से करके फोन करके समाधान पा सकत हन। फोन नंबर है संगवारी हो 266-592। फोन लगाए के पहले अपन हमर बिलासपुर के एसटीडी कोड लगाए ला झनबुला। बिलासपुर के एसटीडी कोड है 07752। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और प्रसारण 18 जून 2026 और 19 जून 2026 संझकन 7:30 से 8:00 बजे बीच में अपन सुन सकत हन। देखा संगवारी गोड़ बात करत करत बेरा होता है किसानवाड़ी ले विदा ले के तो यही कार्यक्रम के संग पंचू भैला देव विदा। जय जोहार राम राम।

किसान वाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। पेश है महिला बहनों का कार्यक्रम महिला सभा।

0: कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाले सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। सखियों, आप सभी कैसी हैं? हमारी आशा तो यही है कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ और मनमस्त होंगी और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्यों से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। सखियों, आज हम महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी मेहनत, लगन तथा प्रतिभा के बल पर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा सुरक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति की बात हो या व्यवसाय की, कला का क्षेत्र हो या कृषि का, या फिर बात खेल के मैदान की हो, हम बेटियां सब में आगे हैं। सखियों, अगर हम बात करें खेल के मैदान की, तो पहले एक समय था जब खेलों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी, लेकिन आज के समय हमारी बेटियां और महिलाएं राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन कर रही हैं। खेल ने महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान और नई पहचान दी है। आज खेल जगत में पीवी सिंधु, मेरी कॉम, साक्षी मलिक, मिताली राज, ऐसी कई महिलाएं, बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। चाहे कुश्ती हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो या फिर मुक्केबाजी हो, अनेक अन्य खेलों में भी हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर भारत देश को विश्व विजेता बनाया है। सलाम है हमारी देश की नारी शक्ति को। सखियों, हमें भी अपने बच्चों को खेल से जोड़ना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। सखियों, खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सखियों, खेल खेलने से आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का भी विकास होता है और खेल हमें सिखाते हैं कि हर हाल में घबराना नहीं है बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही सीख जीवन की हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी मदद करती है। तो सखियों, बच्चों के शिक्षा के साथ साथ ही उन्हें खेल खेलने के लिए जरूर प्रोत्साहित करें, उनके संपूर्ण विकास के लिए। सखियों, अब सुनते हैं कुछ संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सखियो, अब आइए चलते हैं आज के क्रम की ओर। श्रोताओं, आज के क्रम में हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जो अपनी कर्तव्य निष्ठा, कुशल नेतृत्व क्षमता और समाज में सुरक्षा एवं जागरूकता समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डीएसपी महोदया श्रीमती मंजुलता केरकेट्टा जी। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक नमस्कार करती हूँ।
1: मैडम, तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि इस विभाग में आपको आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आप कितने वर्षों से पुलिस सेवा में हैं?
2: मेरी शिक्षा एक ग्रामीण परिवेश में हुई। मेरा गांव जहाँ मैं रहती थी, मेरा स्कूल जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी तो काफी लंबा पैदल जाना पड़ता था। लगभग 8 किलोमीटर रोजाना पैदल जाके स्कूल पहुंचते थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद जब मैं कॉलेज में आई, वैसे स्कूल के समय से ही मुझे स्काउट गाइड में और जब भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी उसके मार्च पास्ट में भाग लेने का अवसर मिलता था और हमेशा मैं उसमें भाग लेती थी। और साथ ही जब हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब परेड होते थे उसका टीवी में जब हम देखते थे उसका मार्च पास्ट जी। तो उसको देख के मन में बड़ी लालसा होती थी कि हम भी एक दिन समाज को सेवा देने के लिए और देश की सेवा करने के लिए पुलिस फोर्स में आकर अपनी सेवाएं दे। और वहीं से कहीं ना कहीं मन में एक लालसा थी और अंततः ग्रेजुएशन के बाद सन 2000 से मैं इस विभाग में सेवा दे रही हूँ। लगभग मेरी सेवा को अब 26 वर्ष हो गए हैं और आप सभी का या समाज के लोगों का इस वर्दी में रह के जो सेवाएं दे पा रही हूँ, मुझे लगता है अगर मैं किसी और फील्ड में होती तो जितनी मदद आज कर पा रही हूँ शायद ही मैं आप सभी का या लोगों की मदद कर पाती
1: जी। यस मैडम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी से समाज में क्या लाभ मिलता है?
2: चूंकि अभी जो भी हम समाज में देखते हैं घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं जहां महिलाएं पीड़ित रहती हैं, पहले जब पुलिस में सिर्फ पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या अधिक रहती थी तो महिलाएं बच्चियां खुलकर अपनी समस्याएं नहीं बता पाती थी। अभी धीरे धीरे महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ रही है और हर थाने में एक महिला संवेदना कक्ष पृथक से बनाया गया है जहां महिलाओं की जो भी समस्याएं रहती हैं या जो भी शिकायतें या उनके साथ घटित घटना हमारे थानों में महिला अधिकारियों के द्वारा सुना जाता है, जिससे महिलाएं निसंकोच होकर बिना किसी भय के, बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं या उनके साथ जो भी अपराध घटित हुए हैं उसके बारे में वो बता पाती हैं, जिससे उन्हें बेहतर मदद उपलब्ध हो पाता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत आवश्यक है कि वो खुलकर अपनी समस्याओं को बताएं। और मैडम जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज पुलिस विभाग में महिलाओं की भी बढ़ती जो भागीदारी है, इसको आप किस नजर से देखती हैं, आप हमें बताएं।
2: निश्चित रूप से इसे मैं कहूंगी, एक तो जागरूकता, धीरे धीरे जैसे जैसे हम शिक्षा के स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं हम देखते और सुनते आ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब हमें बच्चियों की सुरक्षा भी करनी है और उन्हें पढ़ाना भी है। तो एक बच्ची अगर पढ़ती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। जब बच्चियां शिक्षित होती हैं तो वो स्वयं जागरूक भी होती हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। और पुलिस विभाग एक सेवा का विभाग है तो बच्चियां इस विभाग में आके खुद की जैसी और महिलाओं को और बच्चियों को मदद कर पा रही हैं तो उनकी भागीदारी और बढ़ रही है। और जो आज के परिवेश में बढ़ते अपराध में इनकी भागीदारी की आवश्यकता भी है कि अधिक से अधिक महिलाएं या अधिक से अधिक बच्चियां पुलिस विभाग को ज्वाइन करें और समाज में हमारी जो माताएं बहनें हैं उन्हें मदद कर पाएं।
1: जी डीएसपी महोदया जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग में कौन कौन से

0: प्रयास किए जा रहे हैं।
1: पुलिस में आप सभी को विदित होगा कि लगभग अब हर जिले में एक महिला पुलिस थाना की स्थापना हो चुकी है। महिलाओं के ऊपर या बालिकाओं के ऊपर जो भी अपराध घटित होते हैं, वैसे तो सभी सामान्य थानों में जाके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल महिला थाना होने से वहां पे महिलाएं और निसंकोच या बिना किसी भय के जाके अपनी समस्याएं, अपने साथ घटित हुए अपराध के बारे में शिकायत कर सकती हैं, और वहां हमारी महिला अधिकारी और महिला विवेचक रहते हैं जो उनकी समस्याएं बहुत ही गंभीरता से बिना किसी दबाव और बिना किसी भय के वो सुन के उसका निराकरण, जो भी उसमें तथ्य आते हैं उसके अनुरूप करती हैं। साथ ही अगर कोई पारिवारिक विवाद की स्थिति रहती है तो हमारे महिला थाने में काउंसलिंग की भी सुविधा रहती है, परिवार परामर्श केंद्र के रूप में। कई सारे ऐसे प्रकरण रहते हैं जिनका निराकरण काउंसलिंग के माध्यम से ही हो जाता है, जिसमें अलग से अपराध दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है
0: जी।
1: साथ ही जैसे मैंने बताया, महिला थाने के अलावा हर थानों में एक महिला हेल्प डेस्क या एक संवेदना कक्ष होता है, जहां पर महिलाओं की समस्याएं महिला अधिकारियों द्वारा सुनी जाती हैं। साथ ही बालिकाओं के साथ अगर कोई अपराध या उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो हर थाने में एक बालक या बालिकाओं का उनकी बात सुनने के लिए भी निर्धारित एक पुलिस अधिकारी उपलब्ध रहते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं और जो उसमें तथ्य आते हैं उसके अनुरूप कार्यवाही की जाती है। और हमारे महिला विंग या महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं उसकी विवेचना और उसके पर्यवेक्षण के लिए हर बड़े जिलों में एक IUCAW, मतलब महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध घटित होते हैं उनकी विवेचना के लिए एक पृथक से यूनिट गठित है। हमारे बिलासपुर जिले में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर की अधिकारी भी उपलब्ध हैं। अगर कोई महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं तो वो उनकी विवेचना हमारे सभी जिलों के थानों से, जो भी अपराध महिलाओं से संबंधित रहते हैं उनकी विवेचना उनके द्वारा की जाती है। और महिला रक्षा टीम भी एक हमारे जिले में उपलब्ध है, जो लगातार पेट्रोलिंग वाहन से जो संवेदनशील क्षेत्र है, जहां महिलाओं से अपराध होने की शिकायतें जिन क्षेत्रों में रहती हैं, या पार्क हैं, या अभी कल से स्कूल प्रारंभ हो जाएंगे तो हमारी जो बेटियां, हमारी जो बच्चियां स्कूल आती जाती हैं, रास्तों में कहीं इस तरह के बच्चियों के साथ कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए लगातार वो पेट्रोलिंग करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर मदद करती हैं। और जो हमारी महिला रक्षा टीम है वो स्कूलों में जाके हमारी जो बच्चियां हैं उनको अवेयरनेस करने का कार्य भी करती हैं, और बच्चियों को जो उनके स्वयं की रक्षा के लिए जो प्रयास करने हैं, उन्हें एक तो शारीरिक रूप से मजबूत कैसे होना है उसके लिए आत्मरक्षा के छोटे छोटे जो अभ्यास रहते हैं उनकी सिखलाई देती हैं। और सभी स्कूलों को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें भी निर्देशित करते हैं कि जहां भी हमारी बच्चियां पढ़ती हैं वहां स्कूल स्तर पर भी इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हों, ताकि बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ताकि कहीं अगर बच्ची अकेली है और कोई अनहोनी या अप्रिय घटना घटित होती है तो वो स्वयं से अपनी रक्षा कर सके।
0: जी, बहुत आवश्यक है कि हम अपनी बच्चियों को चीजों को समझाएं कि किस वक्त उन्हें क्या डिसीजन लेना है, और साथ ही पुलिस व्यवस्था जो है बिल्कुल उनके साथ है। सिर पे आवाज उठाने की जरूरत है और अपनी आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है।
1: जी
0: मैडम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई महिला है किसी प्रकार के हिंसा या उत्पीड़न का शिकार है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और अपनी बातें बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ में उत्पीड़न हो रहा है तो जैसे मैंने बताया महिला थाना है, वो वहां पर जाके उसकी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आजकल महिलाओं के साथ बहुत अलग अलग प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं, शारीरिक अपराध, मानसिक हरासमेंट या साइबर संबंधी जिस भी प्रकार के अपराध हो रहे हैं, सबसे पहले हिम्मत नहीं हारना है, सबसे पहला

0: बैरियर हमारा डर रहता है
1: जी।
0: अगर हम अपने डर पर काबू पा लें और अपनी बात शेयर कर लें तो उसका निराकरण संभव है
1: जी।
0: तो आपको निश्चित तौर पे अपनी शिकायत थाने में आके देनी चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी कानूनी या पुलिस की मदद मिल सके और जो अपराधी है उसको सजा दिलाई जा सके। साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारी बच्चियों के साथ भी कई प्रकार के अपराध या कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो उन्हें भी निसंकोच होके अगर वो घर में हैं या बाहर कहीं उनके साथ होता है तो घर जाके वो अपने माता पिता से इस बात को शेयर करें। और माता पिताओं से भी आग्रह है कि बच्चों की बातें एक बार ध्यान से सुने कि बच्ची बोलना क्या चाह रही है, वाकई उसको कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है। और स्कूल में अगर आप रहती हैं तो स्कूल में आप अपने टीचर से शेयर कर सकती हैं और आप उनके साथ में परामर्श करके आवश्यकता पड़ती है तो आप निसंकोच थाने आके अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। क्योंकि जो बालिकाएं हैं जो बच्चियां हैं ये भी डर रहता है कि अगर हम थाने चले गए या हमारी शिकायत हो गई तो कहीं ना कहीं आपका नाम डिस्क्लोज हो जाएगा या आपका नाम बाहर आ जाएगा। तो उससे ना घबराएं ना डरें। अगर आपकी शिकायत थाने में आती भी है तो आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है और आपको जो भी कानूनी मदद या पुलिस की मदद है वो उपलब्ध कराई जाती है। तो आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। आपके साथ अगर कोई अपराध घटित होता है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ होती है, तो आप निसंकोच होकर अपनी बातें थाने में आके बता सकते हैं।
1: डीसी महोदया, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज भी कहीं ना कहीं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर भी कई महिलाएं हैं जो बच्चियां हैं जो आज भी कोई समस्या है उसको बताने के लिए भी संकोच करती हैं, साथ ही पुलिस थाने आने में भी संकोच करती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो जो ग्रामीण परिवेश में या कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं जहाँ सिर्फ पुलिस का नाम ही सुन के महिलाएं घबरा जाती हैं, तो आपको घबराने की या आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पुलिस भी आप ही के बीच से, आप ही के समाज से, आप ही के परिवारों के बीच से आए हुए सदस्य रहते हैं जो एक वर्दी में समाज की ही सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आपको अगर ऐसा आवश्यकता होती है या आपके साथ इस तरह कोई घटना घटित होती है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप थाने में आइए, आप अपनी समस्याएं बताइए, हम आपकी सहायता करने के लिए, हम आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। मैं समझती हूँ कि आज की हमारी बातें जो माताएं बहनें हैं जो सुन रही हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद वे पुलिस की सहायता लेने में संकोच नहीं करेंगी, नहीं घबराएंगी और अपनी बातें निसंकोच होके बिना किसी डर के आपके परिवार के सदस्य समझ के आके बताएंगे।
1: जी बिल्कुल मैम। और मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं, कृपया आप हमारी श्रोताओं को बताएं।
0: वैसे हर जिले में एक पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित है। सबसे पहले अगर कोई हेल्प की जरूरत रहती है तो पुलिस कंट्रोल रूम में पहले डायल 100 मतलब 100 नंबर पर डायल, टोल फ्री नंबर पर डायल किया जाता था। अब आप सभी विगत 6 साल से एक नंबर सुनते आ रहे होंगे, डायल 112, डायल 112। ये एक ऐसा नंबर है जो ना सिर्फ पुलिस की आवश्यकता पड़ने पर आप डायल करें, इसमें बहुत सारी सुविधाएं अभी शासन स्तर पर ये मर्ज कर दी गई हैं। आप चाहे पुलिस की मदद लेनी हो, महिलाओं से संबंधित कोई हेल्प लेनी हो, बच्चों संबंधी हेल्प लेनी हो, या प्राकृतिक आपदा के संबंध में, आगजनी के संबंध में, या कोई एम्बुलेंस सेवा के लिए, या कोई नेशनल हाईवे में किसी तरह के दुर्घटना के शिकार होने पे मदद चाहिए, या अन्य तरह की कोई भी अगर आपको मदद की आवश्यकता होती है, आप टोल फ्री जो हेल्पलाइन नंबर है 112 नंबर पर डायल करिए, जो हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर रायपुर से सीधे आप जहां से भी कॉल कर रहे हैं उस क्षेत्र के डायल 112 वाहन को आपकी सूचना फॉरवर्ड की जाती है और तत्काल हमारी डायल 112 की वाहन आपकी मदद के लिए आपके पास में उपस्थित हो जाते हैं। तो ये एक नंबर है। साथ ही अगर महिलाओं को पृथक से कोई अपनी समस्या अलग से बताने

0: की आवश्यकता है, तो वो 1091 1091 ये भी एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर भी डायल करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। वैसे ही बच्चों से संबंधित कोई समस्या हो उसमें आप 1098 1098 इस नंबर पर आप डायल करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। अगर महिलाओं को महिला थाने में आके शिकायत करने में आपको विलंब हो रहा है, आप फोन के माध्यम से भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं, तो उसमें हमारा शासकीय मोबाइल नंबर है 9479193024। आप इस नंबर पर फोन करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। और लैंडलाइन नंबर है 07752228505। आप इस नंबर पर भी कॉल करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इसके साथ ही एक अभिव्यक्ति नाम से ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, और उस ऐप के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
1: और सखियों, आप कोई भी समस्या है आपको तीन नंबरों पर आप बिल्कुल कॉल कर सकती हैं बिना संकोच के। पुलिस विभाग हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार है। आजकल साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आप बताएं।
0: सभी जानते हैं कि जितने भी प्रौद्योगिकी हैं वो हमारी मदद के लिए या हमारी सहूलियत के लिए है, पर कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उसका मिसयूज करते हैं। और इस इंटरनेट के युग में जितनी सुविधाएं हमें उससे मिल रही हैं उतनी ही उसी के माध्यम से या साइबर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से अपराध भी घटित हो रहे हैं
1: जी।
0: तो हम सभी को बहुत ही ज्यादा सजग और जागरूक होने की आवश्यकता है। समय समय पर समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के अलग अलग पोर्टल के माध्यम से पुलिस भी जागरूकता अभियान चलाते रहती है या आप सभी को जागरूक करती रहती है। सभी श्रोता बहनों से मैं आग्रह करती हूँ कि कोई भी अनजान नंबर अगर आपके मोबाइल पे वीडियो कॉल आ रहा है तो आप उसको रिसीव ना करें। अगर आपके अनजान नंबर से कोई लिंक आपके मोबाइल में आता है उसे आप ओपन ना करें। कई अपराध आजकल ऐसे घटित हो रहे हैं कि कोई बैंक वाला बनके या पुलिस वाला बनके या इनकम टैक्स ऑफिसर बनके या इस तरह के अलग अलग रूप धारण करके फोन करके भी आपको वीडियो कॉल करके आपके साथ अपराध घटित कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो मेहनत की कमाई है वो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल खाली हो सकता है। तो आप एक तो कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको कॉल करता है भरोसा ना करें, पहले सत्यता की जांच करें। कोई भी पुलिस आपको फोन करके आपसे पैसे की मांग नहीं कर सकता किसी भी कारण से कि आपके बच्चे को हमने पकड़ लिया है ड्रग्स के साथ में या कोई अवैध कार्य करते हुए पकड़ लिया है, आपसे पैसे डिमांड करता है कि आप पैसे तत्काल मोबाइल के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से भेजें तभी आपके बच्चे को छोड़ेंगे। इन सब बातों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर कोई इस तरह का कॉल करता है आप तुरंत फोन को डिस्कनेक्ट कर दें। आपको वो डराएंगे, जैसे हम अभी सुनते हैं डिजिटल अरेस्ट, यही है कि आपको भय में डाल के आपको डर में रख के वो आपको फोन को डिस्कनेक्ट करने से रोकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, तुरंत फोन को डिस्कनेक्ट कर दें और आप उसको कोई भी पैसे ना भेजें। और साथ ही अगर वो कई बार वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे हेल्प भी मांगते हैं कि कोई उसके परिजन एडमिट हैं या गंभीर बीमारी में पड़े हैं उनकी मदद करिए, तो इस तरह के भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आपसे ये चाहता है तो आप उसकी मदद बिल्कुल ना करें। अगर कोई आपका परिचित है तो निश्चित तौर पर अगर उसको आपकी सहायता की आवश्यकता होगी वो आपसे व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। इस तरह के अनजान नंबरों पर आप विश्वास ना करें। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से ना केवल पैसे के लिए किंतु सोशल मीडिया से और बहुत तरह के शारीरिक अपराध भी घटित होते हैं। कोई आपसे झूठ बोल के फ्रेंडशिप करता है और कहीं ना कहीं बाद में जाके महिलाओं के साथ महिला संबंधी अपराध

0: भी ये घटित करते हैं।
1: और आप किसी तरह भी अगर आपके अकाउंट से कोई पैसे आपके सावधानी बरतने के बावजूद ले जाता है या आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, आप तुरंत साइबर हेल्पलाइन है 1930 1930 नंबर पर आप डायल करके अपनी शिकायत तुरंत करें। अगर आप तुरंत इस नंबर पर डायल करके अपनी समस्याएं बताते हैं तो आपकी मदद जल्दी हो सकती है, आपके अकाउंट से गया पैसा होल्ड कराया जा सकता है जिससे पैसे की वापसी संभव है।
2: जी, जागरूकता ही सबसे बड़ी सावधानी है कहना चाहिए। डीएसपी महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारी सखियों को बताई है, और आप चलते चलते अब हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सभी बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप स्वयं भी जागरूक हों और अपने आसपास जो भी माताएं बहनें रहती हैं, अपनी सखियां रहती हैं, अपने बच्चे हैं, अपने परिवार के लोग हैं, सभी को आप जागरूक करें, सतर्क रहें और हिम्मत रखें, डरे नहीं। कोई भी आपके साथ घटना घटित होती है, आप निसंकोच होकर पुलिस के पास आइए। पुलिस हमेशा आपकी मदद करने के लिए तत्पर है और हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे।
2: डीएसपी महोदया जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बातचीत की और अपने अनुभव और महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारी श्रोताओं के साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी, और सभी माताओं बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए।
2: और हमारी बिल्कुल आशा है और विश्वास है कि ये जो जानकारी आपने दी है वो हमारी श्रोताओं के लिए, हमारी सखियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सखियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम परिसंवाद में बिलासपुर की डीएसपी श्रीमती मंजुलता किरकेट्टा को। विषय था साहस और सुरक्षा। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्रीमती मोनाली ठाकरे की।
3: बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा, एकदम अकेला पड़ गए थे, कभी कर्जा कभी ब्याज। फिर एको दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा।
4: मुसीबत के टाइम भी,
5: बुआई और कटाई के टाइम भी,
3: बीच से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए।
6: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की किसान केंद्रित नीतियों ने कृषि क्षेत्र में रचा नया इतिहास। 4.3 लाख करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फसल बीमा भुगतान, 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसपी पर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद। ये उपलब्धियां किसानों के कल्याण और कृषि विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। SECL द्वारा जन प्रसार में जारी।
2: सखियों, अब आइए आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। गीतकार हैं इशाद कामिल, संगीत है विशाल एंड शेखर का, स्वर हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के।

सखियो, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। कार्यक्रम चिट्ठी मिली में हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49, पिन नंबर है 495006। सखियो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर। और सखियो, इन्हीं बातों और गीतों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

महिला सभा, ये कार्यक्रम अभी प्रसारित किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करे गीत में प्रसारित होगा शाम 6:10 पर और फिर 7 बजे से। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष श्री

इसी विषय पर श्री केदार दुबे की वार्ता प्रसारित होगी और साथ ही श्री आशीष श्रीवास का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। संपादन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:20 पर। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15।

आइए अब आपको जानकारी दे दें कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनिएगा कल प्रातः 6:05 पर। खरीफ फसल की तैयारी समय में आवश्यक प्रबंधन, इस विषय पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती की बात। प्रसारण समय होगा 6:30। नवविहान कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:45 पर। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर जानकारी प्रसारित की जाएगी। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा 7:05 पर। और पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से सुनिएगा 7:30 से। छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई प्रसारित होगा सुबह 8:30 से। इसमें कलाकार होंगे ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार, मुन्ना लाल पाल और साथी। हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 10:00 से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दिन के 11:00 से। विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित होंगे 11:30 से और फिर 12:00 से शाम 5:00 तक। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ सुनिएगा शाम 5:00 से। ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित होगा 5:05 पर। इसमें बेरा के गोठ का विषय होगा उर्वरक प्रबंधन और संतुलित पोषण। साथ ही क्रम सफल कृषक से भेंट में ग्राम परसापाली विकासखंड बमनेरी जिला जांजगीर चांपा के कृषक श्री बद्री प्रसाद पटेल और श्री राजेंद्र प्रसाद पटेल से ली गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। भेंट करता होंगे महंगू भैया। शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम सुनिएगा। इसमें आज की बात होगी दादा दादी नाना नानी की कहानियों के साथ ही उनके साथ अच्छा बर्ताव भी, इस विषय पर। साथ ही युवा पसंद और क्रम सवाल जवाब प्रसारित किया जाएगा। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:20 पर। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंग्ले लीड्स में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा 6:30, 7:00

7:45 और फिर रात्रि 9:15 से खेल समापन तक। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में आज ले शुरू हुई नवा शिक्षा सत्र। स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करीन स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। अब समाचार विस्तार ले। नवा शैक्षणिक सत्र के शुरुआत होए के संगे संग आज ले प्रदेश के जम्मू सरकारी और प्राइवेट स्कूल मन खुल गए है। आज ले स्कूल मन में शाला प्रवेश उत्सव घलो मनाए जावत है जौन 27 जून तक चलही। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचैया नवा लड़का मन के टीका लगा के स्वागत करेगी। उन्हें विद्यार्थी मन ला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यूनिफॉर्म और साइकिल घलो बांटे जावत है। नवा शिक्षा सत्र की शुरुआत ले पहली काली परिवहन विभाग यातायात पुलिस स्वास्थ्य विभाग और जिला सेनानी कार्यालय के सामला टीम स्कूल बस मन के जांच करी। ये दौरान स्कूल बस के सुरक्षा मानक दस्तावेज और कर्मचारी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 45 स्कूल बस संचालक मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। राज्यपाल रमन डे का आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप संग राखे गए 2 दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव के शुभारंभ करी। ये मौका में राज्यपाल कहने की AI आधुनिक युग के एक विशेष तकनीकी हर है जौन चिकित्सा कृषि अर्थव्यवस्था और शिक्षा समेत आने आने क्षेत्र में मानव के सहायक बन सकत है। फिर यह है मानव बुद्धि संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य के स्थान नहीं ले सके। ओमन युवा मन ले आह्वान करीन है कि ओमन AI और आने आने तकनीक के उपयोग नवाचार और समाज के हित में काम करे। ये मौका में राज्यपाल AI कौशल रथ ला हरियर झंडा दिखा के रवाना करीन। ये रथ प्रदेश के आने आने क्षेत्र में जाके विद्यार्थी शिक्षक और आम लोगन मन ला AI की उपयोगिता संभावना और रोजगार के मौका के जानकारी दी। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के स्थायी प्रतीक्षा सूची समेत आने आने विषय ऊपर चर्चा करे जाही। एकर संगे संग विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VVG रामजी के बारे में घलो लोगन मल्ला जानकारी दे जाही। ग्राम सभा में पाछू बैठका में पारित प्रस्ताव के समीक्षा पंचायत के आय व्यय के अनुमोदन आने आने विकास काम के प्रगति और पंचायत संपत्ति के प्रबंधन जैसन विषय में घलो गोट बात करी जाही। संघ लोक सेवा आयोग UPSC हा ए बच्चर के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दे है। आयोग बताने कि 1000 ले ज्यादा पद मन बर 13000 ले ज्यादा उम्मीदवार मन के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बर चुनाई हुए है। UPSC हा उम्मीदवार मन ला यहू बताने कि उखर नंबर कट ऑफ अंक और उत्तर सूची आखिरी रिजल्ट घोषित होए के बाद आयोग के वेबसाइट में अपलोड करी जाही। उम्मीदवार UPSC के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में NDA सरकार के 12 बच्चर पूरा हुए में भारतीय जनता पार्टी डाले प्रदेश के आने आने जिला में पत्रकार वार्ता आयोजित करी जावत है। यही कड़ी में रायपुर में पत्रकार मल्ले गोट

0: करत भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित साहू कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण ला समर्पित रहे है। उन्हें पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मुंगेली में राखे गए पत्रकार वार्ता में कहने की मोदी सरकार के 12 बच्छर विकास विश्वास और जन कल्याण के ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक हरे। खैरागढ़ जिला भाजपा कार्यालय में राखी के पत्रकार वार्ता ला संबोधित करत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बच्चर की उपलब्धि जन कल्याणकारी योजना और भारत के विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो

0: ठीक है। पत्रकार वार्ता ला संबोधित करत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई मा केंद्र सरकार के 12 बच्चर के उपलब्धि जन कल्याणकारी योजना और भारत के विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। ये रोक 15 अगस्त तक रही। ये दौरान नदिया नरवा और तरिया मन में मछली पकड़े में रोक रही। छोटे तरिया और जल स्रोत जिखर संपर्क कोनो भी नदिया नरवा ले नहीं है वहाँ ये रोक नहीं रहा है। एकर संगे संग बड़े जलाशय में व्यावसायिक रूप ले संचालित करैया केज कल्चर गतिविधि में लगल ये प्रतिबंध ले बाहर रखे गए है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत कोनो भी मनखे या संस्था प्रतिबंध के उल्लंघन करत पाए जाही त उखर मन ऊपर 25,000 रुपया तक के जुर्माना लगाए जाही। अब यह 21 जून के मनाए जाने वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के बारे में राज्य के मुख्य सचिव विकास सिल्हा आज मंत्रालय में बैठका लीन। ये समीक्षा बैठक में आने आने विभाग के बड़का अधिकारी मन शामिल हुई। अधिकारी मन बताइए कि ये बच्चर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिला में रखे जाही। उन्हें राज्य के हरेक ग्राम पंचायत के प्रमुख जगह मन में योगाभ्यास के कार्यक्रम रखे के जम्मू जिलाधिकारी मला निर्देश दे गए है। मुख्य सचिव है अधिकारी मला कहीं है कि 21 जून के नीट पुनर्परीक्षा रखे गए है इला ध्यान में रखत यह सुनिश्चित करे जाए कि योग दिवस आयोजन के सेती नीट परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी मला कोनो किस्म के असुविधा जन हो। ये बच्चर योग दिवस के थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित करेगी है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव 5 गांव में जन चौपाल लगा के गांव वाले मन के लिए गोट बात करी। ओमन विकास काम और सरकारी योजना मन के जानकारी लीन। ये दौरान आने आने गांव पर लाखों रुपया के विकास काम के घोषणा करी और युवा खिलाड़ी मल्ला क्रिकेट किट घलो दी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग डहर ले बिजली के दर में करेगी बढ़ोतरी के प्रदेश कांग्रेस डहर ले विरोध करे जावत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा आज रायपुर में पत्रकार मन ले गोट बात करत कही ने कि बिजली के दाम में करेगी बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापिस ला ले के कांग्रेस आंदोलन करही। उमन कही ने कि काली 17 जून के प्रदेश के सबो जिला के बिजली ऑफिस के घेराव करे जाही। 18 जून के कांग्रेस जम्मू जिला में पत्रकार वार्ता करके बिजली के दाम में हुए बढ़ोतरी के विरोध करी। श्री बैजा बताइए कि जुलाई के पहली हफ्ता में कांग्रेस कार्यकर्ता मन है स्मार्ट मीटर के खिलाफ घर घर ले आवेदन भरवा के स्मार्ट मीटर हटाए के मांग करी। खबर के मुताबिक राज्य सरकार है घरेलू उपभोक्ता मन के बिजली बिल में हरेक यूनिट पाछू 30 ले 50 पैसा और गैर घरेलू बिजली दर में 20 ले 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करे है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जुड़े सबो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मन में स्नातक और स्नातकोत्तर पहली सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज ले शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरण में हो ही विद्यार्थी मन ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करना हो ही। शक्ति जिला में ACB बिलासपुर की टीम है रिश्वत लेवा शक्ति जनपद पंचायत के CEO निखिल कश्यप बाबू अविनाश ठाकुर और चपरासी लक्षण भानु ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन ऊपर 1 लाख रुपया की रिश्वत लेके आरोप हवे। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण काम के चेक जारी करे के एवज में रिश्वत मांगे रहीस। ACB है तीनों जन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रदेश में आज ले शुरू हुई नवा शिक्षा सत्र। स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करी स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार ह आज

0: मछली पकड़े मा रोक लगा दे हे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत हे। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
2: प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 6:20 हुए हैं। पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश जमानिया से सुरेश उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी गुजरात से, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर आप सभी भिलाई नगर से, लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह आप सभी लोहगढ़ ठकुरावाला से, लोहारेडी कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, ललिमा, खुशांत और निशांत साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन, अनजान साइमा, नवाज हसन, नवाज अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम और कृष्णा देवांगन, लूत्रा खमरिया से अकरम, अमीन, अर्श और अतीका, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अलकबीर, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब इरफान मोहम्मद, बागबहरा भदरसी से पन्ना लाल, खुशबू और तारा और कौशल सेन, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना और वली अंसारी, सामंतपुर से ऋषि, रीतेश, कंचन और माही सेन, बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी, नंदा, हनुमान बोडखे, पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ, पंकज और तिरुपति साहू, हरिद्वार लक्सर से ताज मोहम्मद, अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहां, नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता, अरुणा, सुलोचना और चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय, नमन और अपार ढींगिया, पलारी से प्रकाश, निखिल, यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा और विनय शंकर पांडे। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म का, राजेंद्र कृष्ण का लिखा, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। शंभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिलाईगढ़ से खीकराम, रेनू, रजनी और प्रियंका देवांगन। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये आप सभी डोंगरगांव से। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा। मगरलोड सौंगा से फनेश कुमार, सावित्री देवी, मोहित, देवी करानी, गजेंद्र, हेयंश कुमार चंदन। पोरीभाटा अकलतरा से दिलीप, चोवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। कोलगांव से पांडु, उषा, प्रतीक्षा चंदन। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और गर्व हिमाक्ष। अनिल बुरांडे, उषा, अनु

श्री और धनश्री बुरांडे पांडर कावड़ा से, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, डबरीपारा तीव्रता से महेंद्र प्रताप, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह सहोदरी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी, वीना, चैतन्य और मेघा मस्किन, नांदेड़ से संतोष, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहां, तलत फरहत, रिफत, नुजहत, शाजिया शाहीन, नाज और नाजिया नूरी नाज, कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कलिंद्री लहरे, भोंगिर तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश और नीलम बत्ता, जगरांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है आशा भोसले के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया लोफर फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी और उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डबवाली से राजेंद्र, अंजू मोहित और तानिया नारंग, भाटापारा धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी, आप सभी बुलंदशहर से, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मुरादाबाद दुल्लापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी साही, साहिल और भारती बघेल, राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी और मालती चौधरी, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु और डाली पूर्वेश साहू, महाराष्ट्र नरवेल से पी एस नवानकर, निर्मला, विशाल, फजिलका पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोधारा, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, यवतमाल से जयराम शिंगणकर, दिशांत और अर्पिता, राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। बेटी बेटे फिल्म का ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा, एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एको दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीच से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए।
3: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की किसान केंद्रित नीतियों ने कृषि क्षेत्र में रचा नया इतिहास। 4.3 लाख करोड़ रुपए की PM किसान सम्मान निधि, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फसल बीमा भुगतान।
5: ईमेल करें, गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रज्ञेश और पितृश संघई, यावतमाल से राहुल मनवर, सलरा, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू। तो लीजिए, आप सबकी पसंद पर पेश है सन्यासी फिल्म का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। इसका शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे से। और फिलहाल प्रादेशिक समाचारों के लिए जुड़ेंगे अपने रायपुर केंद्र से।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध। और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर

0: चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। ग्राम सभा में पिछली बैठकों में पारित प्रस्तावों की समीक्षा, पंचायतों के आय व्यय का अनुमोदन, विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। आज से स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जा रहा है, जो 27 जून तक चलेगा। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जा रहा है। राज्यपाल रमन डेका ने आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे एआई और अन्य नई तकनीकों का उपयोग नवाचार तथा समाज हित के कार्यों में करें। इस मौके पर राज्यपाल ने एआई कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आम नागरिकों को एआई की उपयोगिता, भावनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी देगा। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 15 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान नदी, नालों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे छोटे तालाब और जलस्रोत जिनका संपर्क किसी भी नदी नाले से नहीं है, उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बड़े जलाशयों में व्यावसायिक रूप से संचालित की जाने वाली केज कल्चर गतिविधियों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक श्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुंगेली में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, विश्वास और जन कल्याण की ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं खैरागढ़ जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा

बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी का प्रदेश कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली के दाम में की गई बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि कल 17 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 जून को कांग्रेस सभी जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बिजली के दाम में हाल ही में की गई बढ़ोतरी का विरोध करेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे और गैर घरेलू बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव विकास शील ने आज मंत्रालय में बैठक ली। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिले में आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में 21 जून को योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों पर अनिवार्य रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। दुर्ग जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और कलेक्टर तथा क्रीड़ांगण समिति के अध्यक्ष अभिजीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित जिला क्रीड़ांगण समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में तय प्रस्ताव के मुताबिक वर्तमान परिसर में बने बैडमिंटन कोर्ट की जमीन को छोड़कर बाकी की पूरी भूमि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के माध्यम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंपी जाएगी। इसके लिए भूमि को 33 वर्ष की अवधि की लीज पर देने का प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजा जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। विद्यार्थियों को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी होगी। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में कल सुबह 10 बजे अभनपुर से कुरुत के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे ने आम लोगों से रेलवे लाइन से दूर रहने और अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने को कहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने औषधि नियम में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आज कांकेर में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पथ और फुटकर विक्रेताओं ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण संबंधी आवेदन जमा किए। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा 19 जून को कलेक्टोरेट परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध। और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय 7 बजे हैं। पेश है ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग। कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है यवतमाल महाराष्ट्र से कल्पना राव, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता लोखंडे, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान, वसंतराव, निवृत्ति आडोकर, सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह नेपाल नगर मध्य प्रदेश से, चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत, क्रिस्टी पटवा, धरदेई सरगांव से, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश गम्हाणकर, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अल्तमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शदाब खत्री, कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता, आप सभी पिपरिया से, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, राजगढ़ से गोविंद, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यावतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्रव्या रामटेके, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, नागर कोहरा, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, छीपा, पूजा परिहार, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, कतियापारा जूनाबिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति बुरगहन से, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द सिंह, राहुल, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग, आप सहारनपुर से मुस्कान, विनेश कुमार और रागिनी बरेली कैंट चनहेटी से, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, खोंदला, उदयपुर, सरगुजा से जीवधन सिंह, घुरनी, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, चरौदा भिलाई से नौशाद अहमद, हमीदुन, जीशान, शाहनवाज, अहमद सिद्दीकी, बोरसरा नैला से प्रमोद, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, छनुला श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, आप सभी बिलासपुर से, भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, नीरज, शुभम, सौरभ, ग्वालियर से सुरेश, किरण, लव्या, आरव, खुराना और एसके पप्पी, मोताला से विजय, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर, अहमद भाई, दुखनी, सदफ, आरजू, जूही, इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा, परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद फुलवाले, आप सभी करजत मुंबई से, दिल्ली से प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सोलम वली और आसमा वली। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और साथियों के स्वर में अनजान का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद्ध किया, डॉन फिल्म का ये गीत।

0: महफिल में कैसा है कौन।
1: ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव भानु, प्रिया, माधुरी किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया। इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश लहरे, कालिंद्री लहरे। कुरासिया कालरी चिरमिरी से। जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर। वैशाली शैलेश गवाणकर, टुकटुक गवाणकर, प्रिंस एकाश, सुमित ध्वनि गवाणकर, आप सभी नागपुर से। पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत मनु, जॉन रिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलीज रिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से। प्रकाश नर्मदा, सुजाता पोहरकर, आप सभी तेलहारा से। मुंगवाल से भरत राम पडोटी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली देशमुख, सर्वद और सानवी देशमुख, आप सभी कालेगांव जाफराबाद से। तो लीजिए, आप सबकी पसंद पर पेश है अलका याग्निक के स्वरों में कृष्णा फिल्म का ये गीत।

0: ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम समाप्त हुआ। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला अब हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जनकल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
3: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
2: जी,
3: विश्वास और जनकल्याण
2: जी,
3: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जनकल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
2: जी।
3: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
2: जी,
3: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जनकल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
2: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
3: विषय यह उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
2: जी।
3: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु

0: परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा।
1: जी
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने,
1: जी
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक

0: कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
1: जी
0: उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो इमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे
1: बिल्कुल
0: रहा है, अखबारों में भी आया है,
1: जी
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण
1: जी
0: फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है
1: जी
0: जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है,
1: बिल्कुल
0: और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पोल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही
1: जी
0: कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गांवा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना आए।

0: कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला
1: जी
0: पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती
1: जी
0: हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना
1: बिल्कुल
0: कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है उसके प्रति, अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना
1: जी
0: पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहाँ पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी
1: जी
0: की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है, एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के
1: बिल्कुल
0: दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं, और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ

0: समग्र विकास भी होना चाहिए।
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं।
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक

0: अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
1: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
0: जी।
1: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
0: जी।
1: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
0: जी।
1: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
0: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
1: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
0: जी,
1: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
0: जी?
1: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
0: जी।
1: आप एक बात बताइए
0: जी,
1: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
0: जी।
1: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
0: जी,
1: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
0: जी,
1: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
0: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
1: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
0: जी।
1: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का

0: विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए,
1: जी
0: अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है।
1: जी
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए,
1: जी
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी
1: पृथ्वी
0: कभी
1: भी कभी
0: जीवन
1: जीवन
0: था।
1: था। क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए, कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया, सौदागर फिल्म का ये गीत।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हम फिल्म का ये गीत।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाजों में समीर का लिखा, विजू शाह का संगीतबद्ध किया, बड़े मियां छोटे मियां फिल्म का ये गीत।

अलका याग्निक, उदित नारायण, अमित कुमार और साथियों के गाए बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 18 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय कोरबा के प्राध्यापक डॉ. तरुण कुर्रे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ मौसम में धान बीजों उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ मौसम में दलहनी तिलहनी बीजों उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 18 जून और 19 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम भुइयां के

0: भुइया के बोली कार्यक्रम सुनैया सबो संगवारी मनला सुप्रिया के जय जोहार। संगवारी हो, जब जब हमन अपन लोक संस्कृति के गोठला करथन त सबसे पहली आंखी के आगुमा गांव के हरियर खेत, तरिया के निर्मल पानी, जंगल के छैया, चिरई चुरगुन के मीठ मीठ बोली हा उभर के आ जाथे। असल में हमर लोक संस्कृति के जड़ है प्रकृति में समाये हवय। हमर तिहार, हमर लोकगीत, हमर रीति रिवाज, हमर मान्यता, जीवन शैली सब्बो प्रकृति और पर्यावरण ले गहिरा रूप ले जुड़े हवय। आज जब दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के बात चलत है तो ऐसने बखत में हमर लोक संस्कृति हमन ला याद दिलाते कि प्रकृति के संरक्षण कोई नवा विचार नो है, वरन ए ता हमर पुरखा मन के जिए जगाए जीवन दर्शन हवे। आव आज के ई कार्यक्रम में पहली जानन कि कैसे ई प्रकृति और पर्यावरण हमर लोक संस्कृति के आधार बनिन और आज घलो इमन हमर जीवन ला कैसे दिशा देत हवे। प्रकृति और पर्यावरण ले जुड़े हमर लोक संस्कृति ए विषय पर अपन विचार रखत हवे सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री केदार दुबे जी मन।
1: हमर सृष्टि के सृजन कबले होइस एकर ठौका बेरा समय के निर्धारण करे नहीं जा सके। फिर हवा, पानी, आगी, माटी के संगे संग मनखे परानी, जीव जंतु दुनिया में उपजिन तब भेले मनखे के सरोकार नदिया नरवा, पहरी पहाड़, जंगल झाड़ी, रूख राई, पंछी परेवा, जीव जंतु ले हलू हलू बखत बेरा में जुड़ते गीस। आगास में चंदा चंदैनी, उवस सूरज और भुइया में घाम, बादर, जड़काला जैसे मौसमी जिनिस मन प्रकृति के साथ सिंगार बन गए। प्रकृति अपन रूप में मनखे ला लुभो के बांधत गीस। ए सब्बो मनखे बर उखर आगू पाछू घलो पर्यावरण हो गे। प्रकृति और पर्यावरण संग मनखे के जम्मो सरोकार उखर संस्कृति बन गे और लोक में बगर गे। मनखे के आचार विचार, व्यवहार, रहन सहन, पहनावा, तीज तिहार, परंपरा जैसे आनी बानी के काम काज संघर गे, जेला पीढ़ी दर पीढ़ी मनखे अपन संस्कृति मा संजोवत गीस। हमर छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के झरोखा ले प्रकृति पर्यावरण ल झांक के देखबो ता अंतर मन मा सुघर सुघर विचार उपजही। मनखे जन्म ले मरनी हरनी तक सरलक जम्मो परंपरा, रीत रिवाज प्रकृति संग बाना कस बंधाए है। नोनी बाबू के अवतरे पाछू जज की हाई दाई ला जौन काके पानी पियाए जाते तेमा उरई पान जरी होते। छठी बरहों में जेन सोहर गीत गाए जाते तेन मा रूख राई, सोन चांदी, चंदा चंदैनी के जिकर मिलते। लैका मन के खेले बर गिल्ली डंडा, पचरंगा, चक्री ढेलवा, इब्बा, झुलवा, गेड़ी सबो कोनो न कोनो बिरिछ ले बने रहते। गेड़ी के गोट निकलिस तो हमर छत्तीसगढ़ के हरेली तिहार ले बड़े पर्यावरण के उत्सव कहूं नहीं मनाए जाए। सावन भादों के घीरे बदरिया संग झमाझम हरेली के तिहार के जौन आनंद रस मिलते ओखर सुरता बिसारे ले कभू नहीं बिसरे। खमहार पान पैरा और नून के लोंदी गरुआ बैला मनला खवा के उखर सुघर सेहत के बंदोबस्त करे जाते। खेती औजार ला धो मान के सफा सहेज लेते। घरों घर दुआरी दुआरी लीम डारा खोज के साफ सफाई स्वच्छता के संदेश दे जाते। पूरा तिहार त बैला जोड़ी जोरे के तिहार आए। देवी गंगा के लहरा तुरंगा मा हमर भोजली दाई के आठों अंग भींजा थे। ऊंचे गंगा जली, गंगा बारू, भोजली, दौना पान, तुलसी दल के मितानी महक जाते। देवारी तिहार के आवत ले घर अंगना दुआरी के साफ सफाई, रंग रोगन, ओदरे भितिया मा गोबर माटी के छपाई, छूही

केली पाई किए जाते। और गेरू, सुवा पांखी, हरियर पान, पीवरा माटी, नीलहू रंग के सुघर बने चिरई चिरगुन मंदिर देवाला धनुष बाण पशुधन के चित्र उकेरे जाते, जेमा हमर जिंदगी पर्यावरण के गीत गावत कस दिखते। देवारी, सुरहुत्ती, गोवर्धन तिहार मा माटी के दियना लक्ष्मी, गणेश, गुवालिन के मूर्ति बनाते, जेमा मनखे के जिंदगी के रहस्य और दर्शन समोए रहते। घर के दुआरी मा ऊंचा बांस गड़िया के ओखर ऊपर मा रतिहा कुन जगमगावत आकाश दिया के अंजोर, जिहा पुरखा मन के सुरता वंदन करते, ऊंचे स्वच्छता समृद्धि के संदेशा घलो देते। सुरहुत्ती दिवाली तिहार के बीते ले माटी के चौरा मा कलसा बार के सेवा जतन करते, ईसर राजा दुल्हा दुल्हिन गौरा नाचे संगमा और एक पतरी रहनी झैनी ल सुन के मन झूमर जाते। एकादशी के माई लोगन बिहनिया धनहा कोठी मा रंग गोला के हत्था चित्र बनाते, जेखर ऊपर संझा गोबर के थक्का देके आशीष सुख धेना देते। जेला देख के गौ के गर्म बंधे नवा सुहाई हासे लागते। सुहाई जेमा परसा जड़ी के सुतरी मा बंधाए मंजूर पीक जुड़े रहते। बाजा बिहाव के गुरदुम बाजे लोक संस्कृति के ए संस्कार मा घलाव बर बिहाव बर बर बिहाव के मौर मौरी सुघर छीन पान के बने मटुक बरोबर झलक थे। डुमा डारा के छाजन और मंगरोहन बांस पेड़ के मड़वा तरी जन्म जिंदगी के संगवारी ए जन्म मा सात जन्म के गठ जोर नता जोर लेते। बांस के पोंगरी, बांसुरी के मोहनी सुरहा, लोरिक चंदा के गाथा गर्दिस और नन लाला मनमोहना रजिया संग वृंदावन मा रहस रचा दिस। रचो रचो वृंदावन रास देखन मैं न गई, ऐसे मन के साथ मने मन में रहिए। बैला के घर मा बंधाए खड़फरी दूरिया ले बाजत बाजत बर्दी के पहटिया ला लय ताल मा सावचेत करत रही थे। सन बीच के धुन सुन सुन के नाचा के परी के पाँव मा घुंगरू बंधा गे। लोक संगीत के जम्मो पटंतर प्रकृति ले उपजे है। कोयली के गाना, झिंगुर के ताना, तोता मैना के गुठियाना, रागी वसुदेवा मन के जय गंगान हमर सुघर पर्यावरण के बखाने। बसंत पंचमी के दिन ले अंडा के थांगा गाड़ के होरी तिहार के नगाड़ा टिमकी गांव गली में गुंजे लागते। मात गे है सरसों के फूल गंधीरवा मात गे है औ दे दे बलौवा राधे को, राधे बिन होरी न होए, जैसे फाग गीत के धुन मा रंगाए चंगाए रंग गुलाल अबीर मा सनाए लैका सियान मन अपन अंतस मा बीरिज के रंग रसिया कस मया पीरित सद्भाव आपस के मेल मिलाप के राग रंग मा मगन झुमरत रथे। ऐसन है गांव के देव देवाला ठाकुर देव बूढ़ा देव अंगा देव के महत्तम वंदन अर्चन मा फूल पान नरियर के जिनिस प्रयोग करे जाते। कहूँ कहूँ गांव के सिवान मेड़ो तीर मा कोनो बिरिज के चरण मा पांच पांच गोटी पथरा धर के दूसर गांव परदेश यात्रा मा जावत बेरा नहीं तो लहुटे बेरा चिरपोटी देव पूजे के मानता हवे। नंदिया कुआ बावली मा दिया जलाए के परंपरा घलो है। कोयली पणकी परेवना तीतर सुवा मैना बामहन चिरई मन है हमर लोकगीत सुआ ददरिया कर्मा सरहुल मा जगह जगह रमे हैं। वनस्पति मा 36 प्रकार के भाजी इंचे रांधे जाते। हमर छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल मा उरांव कमार बिंझवार बैगा गोण हलवा भतरा जैसे जनजाति मन के रीति रिवाज धर्म संस्कार तीस तिहार और जम्मो प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण बर अब्बड़ घुले मिले जुड़े ओखर गीत गोविंद नाचा गवई बजई साज सिंगार सबों में प्रकृति के उपादान मिलते। वट वृक्ष आंवला तुलसी पीपल केला और आम पत्ता के प्रयोग पूजा अनुष्ठान में करे जाते। हाट बाजार मेला मड़ई सबों में प्रकृति हमाए है। बोली भाखा लोकगीत लोक गाथा लोक बोली
जैसे लरिया

0: खलताही, बैगानी, कुड़ूक, सादरी, दोरली, बिंझवार के संगीत नाचा मन सब्बो के सब्बो प्रकृति और पर्यावरण ले अतका सांझर मिंझर हैं, शब्द लोकोक्ति ले अटाए परे है कि मन होते चल न संगी मन न रमा लेते प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण मा और संगे संग गावत बजावत झूमत नाचत बिंधुन हो जाते काबर के एदे झूलना बंधा गे आमा डार मा।
1: अभी आप मन सुनत रहो श्री केदार दुबे जी के विचार। संगवारी हो, जंगल, नदी, माटी, रुखराई और गांव के जीवन हमार कविता मन में बार बार झलक थे। इही क्रम में अब प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ। काव्य पाठ करत हावे सुप्रसिद्ध कवि श्री सनत तिवारी जी मन।
2: मोर पहली कविता के शीर्षक है हमार भारत। ये धन धरा मोर भारत।

सागर, उठती माँ बंगाल की खाड़ी, बुढ़ती माँ सिंधु महासागर। जिह सर्वे भवंतु सुखिना के, जिह सर्वे भवंतु सुखिना के,

जिहा घर घर मां बलिदानी हवै सबके ये प्राण के प्यारा है, जिहा जमो धर्म भाई बनके, जिहा जमो धर्म भाई बनके सुख पूर्वक जिनगी गुजारत हैं, ये धन्य धरा मुर भारत है, ये धन्य धरा हमारी एक संस्कृति। पखना पखना जिहा किस्सा है, रोम रोम माँ बलिदानी, एकर गुण गान के वर्णन माँ थक जावे सबके बानी। उनचास पवन जिह जुर मिलके, उनचास पवन जिह जुर मिलके, ये

गौ माता सबके महतारी, तरिया नदिया पानी बादर, चारो धाम जंगल झाड़ी, जिह चुहत पसीना गंगा जल है,

हे सुखदाई हरि हर रुख राई हर होथे सुखदाई, देवतन के वास होथे।

आवाओ जंगल ला जुर के हम बचाबो रे तभी जिंदगी पाबो। जी हाँ रही हरियाली आही खुशियाली, जी हाँ रही हरियाली आ

ईद देवारी हम भुयाला स्वर्ग हम बनाबू रे तभे जिंदगी पाबू। आवो जंगल्ला जुड़ के हम बचाबू रे तभे पुण्य पाबू। मोर तीसर रचना हवे ओला बचाना बहुत जरूरी है, बामहन चिरैया जेला गौरैया की थे ओकर बारे में मैं तुम्हारे सामने बतावत। ओ बामहन चिरैया नहीं तो सुने च्यों तोर में तो कई बछरली, ओ गौरैया मोर नहीं तो सुने च्यों तोर में तो कई बछरली। फुदकत फुदकत फुदुक फुदुक खिरखीले बुलक के आवत, देखते देखत मिलकी मारत फिर फुरले उड़ जावत। तरसत हे मोर दोनों नैना, तरसत हे मोर दोनों नैना, दे खेबर कई पहरले। मोर बामन चिरैया नहीं तो सुने क्यों तोर में तो कई बछरली। सुतरी कांदी डिटरा पैरा चोंच में दाबे लानत, सुतरी कांदी डिटरा पैरा।

बूढ़तु पर्यावरण बहर ले वो बामन चिरैया नहीं तो सुन्यो चिं तोर मैं तो कई बसर ली।

आजा मोरे सगुन चिरैया मन के पीरा हर ले मुर बामन चिरैया नहीं तो सुनेऊ क्यों तोर मैं तो कई बछर ले समा गई सतोर बोली बानी

0: अब तोला बचाबुन मिलजुल के, अब तोला बचाबुन मिलजुल के, नहीं छोड़न कोनो कसर ले मुर बामन चिरैया, नहीं तो सुनो क्यों तोर में तो कई बछर ले।
1: आइए प्रकृति के ऊपर में मन भर जाते, अब भगवान के बनाए हुए प्रकृति ले जुड़ा।
0: जल रंग भर तरिया और लहलो लहलो कमल फूल, जल रंग भर तरिया लहलो लहलो कमल फूल, संग भौर भुन भुना थे तो मनहा भर जाते रे, जब भौर भुन भुना थे। अषाढ़ के वो महीना घपटे करिया बादल, अषाढ़ के वो महीना घपटे करिया बादल, संग बेंग व टर टरा थे तो मनहा भर जाते, जब बेंग व टर टरा थे। मुजरा मुजरा धान और दूध भरे कंसा, जब माथला नवा थे तो मनहा भर जाते रे, जब माथला नवा थे। बिहनिया के बेरा और गम कत पुरवैया, बिहनिया के बेरा और गम

0: चाहते महतारी के कोरा और कोरा मलाइका, महतारी के कोरा और कोरा मलाइका। जब लइका खिल खिलाते तो मनहा भर जाते, जब लइका खिल खिलाते।
1: संगवारी हो, प्रकृति सिर्फ हमर चारों कोती बिखरे संसार नोए, यह हमर संस्कृति है, परंपरा है, हमर जीवन के आधार है। जेन धरती जंगल और पानी ला हमर पुरखा मन सहेज के रखिन, ओला बचाए रखना आज हमन सब के जिम्मेदारी हावे। तो चलो संगवारी हो, यही हरियर संदेश के संग, यही कामना के संग कि हमर प्रकृति हरियर रहे, हमर संस्कृति समृद्ध रहे और हमर छत्तीसगढ़ी भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे। अब अनुमति देवा सुप्रियाला, जय जोहार।

भारतीयन की। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:25 हुए हैं। पेश कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए आज का रजनीगंधा आरंभ करते हैं इन पंक्तियों से। खुदा हर रात चांद बन के आए, दिन का उजाला शान बन के आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे की हंसी, हर नया दिन ऐसा मेहमान बन के आए।

अपने रिश्ते पे हमें नाज है, कल जितना भरोसा था उतना ही आज है। रिश्ते वो नहीं जो सिर्फ गम और खुशी में साथ दें, रिश्ता वो है जो हर पल अपनेपन का एहसास दे।

पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज्यादा है आपसे, न सोचना कि भूल गए हैं हम आपको, जिंदगी भर चाहेंगे ये वादा है आपसे।

ख्वाब अगर तुम सा हो ये ख्वाब न टूटे, यार अगर तुम सा हो ये साथ न छूटे, दिलों की डोर से बंधे हैं ये रिश्ते, कभी भी दिल से दिल का ये तार न टूटे।

0: इस गीत के साथ ही रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग

0: ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमरीका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

0: गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहाँ पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1,000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते

0: हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian.

समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म साथ साथ में। कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है जावेद अख्तर ने।

0: इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना।

0: शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44। फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंतदा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की किताब पर चंद मोती चमकीले हैं तो चंद मोती मटमैले। किताब के कुछ पन्नों पर आंखें ठहर जाती हैं तो कुछ को नजरअंदाज कर पन्ने पलट दिए जाते हैं। बस यही फलसफा रोजमर्रा की जिंदगी का भी है। कुछ चमकीले लम्हों को हम संजो लेते हैं स्मृतियों की तिजोरी में, कुछ उदास लम्हों को अपनी जिंदगी की किताब से बाहर कर देते हैं। कुछ लम्हों को हम अपनी जिंदगी का आईना बना लेते हैं और देखा किया करते हैं खामोशी से।

दिल का तार चुपके से किसी के तार से जुड़ गया। खोजती आंखों में ख्वाहिशें पनाह पाने लगें, किसी से मुलाकात के जतन होने लगे। आंखें मिली, दिल मिल गए तो यूं दूर रहकर दिल को तकलीफ देना नाइंसाफी लगने लगी, तो फिर मिलने की दुआएं की जाने लगी।

दिल को समझाया बगैर उनके जीना सीख ले, पर जिद्दी दिल कहां मानने वाला, वो उन्हीं के पहलू में जा बैठा। दिल को क्या खबर थी उनके संग मन्नत का धागा बांधना, मुश्किलों के पुल से गुजरना होगा। मोहब्बत से बावरे हुए मन ने न समझी ये बात और चढ़ता रहा मुश्किलों के पहाड़।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पता नहीं था जुड़ेंगे दो दिलों के तार कुछ यूं, एक साथ दिल की धड़कनें गाएंगी प्रेम का तराना। पता नहीं दिल के एहसासात उनके दिल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं था मोहब्बत ये छोटा सा लफ्ज लिख देगा जिंदगी की वसीयत। पता ही नहीं था वादा होगा चांद सितारों से साथ निभाने का।

बहती नदी की मानिंद हो जाती है जिंदगी जब चलती है प्यार के बयार। जिंदगी की कश्ती हौले हौले तैरती है, लेकिन वक्त की सुई तेज चलने लगती है। एक लड़की जब प्यार के रथ पर सवार होती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो सिर्फ प्यार बोलती है, प्यार उड़ती है, प्यार पहन अपने सपनों की नगरी में चल पड़ती है, विचरती रहती है।

0: सूरत।
1: उनकी आवाज के पार भी एक आवाज थी। उनकी आवाज ने जिंदगी की तपती धूप को नरम छांव में तब्दील कर दी। उनके अल्फाज दिल की घाटी में चंचल नदी की तरह उतरने लगे। आसमान की तरह उनका कद आंखों में बस गया। बस उस रोज से होठों पर तिरता है मोहब्बत का नगमा।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात

0: फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसियन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark in Arm campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to build